0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

मेरे वाल है जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसे दा क्यों बना मैं किसे कोलों क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे कोलों ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तू ही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इसे शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जो तो गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानू पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये वेख लो फरमान है महाराज का हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्हां नूं जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणां च बैठे हुए ने। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसी ना। जे लड़ाइया हैगियां भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हां, महाराज दे चरनी आ गए हां। ते जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे, महाराज तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है ते साडे भी प्यारे ने, है ना। फिर कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते हां, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर गया, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वो भाई क्यों तरक्की कर गया, वो बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ा याद रखने वाली ने, जो रब नाल जा तू मेरे वल है ता क्या मूँह छंदा। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वो दस रहे ने महाराज।

कोई ना पूछे जा हर बख्शंदा, जो हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदो मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा विछड़िया गुरु मला दे, मैं रब तेनू

प्रभु भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाही दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पिया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जां महाराज कहंदे मिल गुरु गोबिंदा, मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदों सुख मिलता है, उदों आनंद मिलता, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जदों गुरु मिल जांदा है आनंद।

सब काज सवारी है। हुण इस पंक्ति ते महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जे तैनूं पा गया मैं तेरा बन जा, तैनूं मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुसी महाराज दे क्यों नहीं तुसी लड़न लगदे? कहो महाराज जी अहीं की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसे दी फिक्र

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। चूंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात ये है कि हम समुदाय से लोगों को यहां आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो किस तरीके से इस माहौल में, यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं। आप गामा टू ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: थैंक यू सर, गगन जी थैंक्स अ लॉट।
6: काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: थैंक यू गगन जी।
6: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
7: थैंक यू सर। आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन डॉक्टर एम एल शर्मा मॉन्टेसरी स्कूल सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मेरे पिता जो कि स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो उस दौरान कैसेट्स लेके आते थे जिस देश में गंगा बहती थी, उस दौरान उनकी फेवरेट मूवीज रही हैं, देखते आए हैं। उस समय हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर होता था सर
6: जी,
7: तो मैं स्वर्गीय मुकेश जी व रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने सुनकर बड़ा हुआ सर। थोड़ा बड़ा हुआ तो 10th क्लास के दौरान MS इंटर कॉलेज सिकंदराबाद में NCC ज्वाइन की। 11th में NCC में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए आई हैव गॉट मैनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, अटेंडेड ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन हेल्ड एट सापुतारा गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993
6: जी।
7: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। 94 में ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में एंड अवार्डेड बाई कर्नल एसन थ्रॉट जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे। इट वॉज नेशनल लेवल का ये
6: कॉम्पिटिशन था।
7: कॉम्पिटिशन था सर।
6: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई।
7: yes,
6: ये आपको विरासत में मिला है।
7: yes,
6: क्योंकि
7: sir,
6: आपके yes, फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे। yes, उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला। जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा। जी जी,
7: जैसा कि नाम में ही है ऑल इंडिया ट्रैक 1994 आई गॉट एनसीसी सी सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो
6: आप गाते थे।
7: नहीं सर, देशभक्ति के गीत। और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती थी।
6: ओके ओके ओके, तो मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
7: सर,
6: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही। उसके बाद
7: फिर संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में। अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर, वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर।
6: जी जी।
7: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ।
6: ओह ग्रेट।
7: ये दिल मांगे मोर,
6: तो
7: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर।
6: हाँ।
7: उसमें था ये

0: दीदार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा,
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी वो भी काफी चला था इस दौरान, स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओ ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ थे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब की नोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर, गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के। वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के नॉन इन्वेसिव है,
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था,
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर,
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर मैं
0: और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए?
0: डेफिनेटली सर, इन कोलैबोरेशन बाय कैप्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी दिल्ली एंड एसपीजी इंस्टीट्यूट देहरादून ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है, सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, बट

0: It should be sustained.
1: क्या
0: बात? Follow the treatment plan. Back the movement plan.
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है. और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे ज़रूर. यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूज़िकल ब्रेक की ओर चलें. कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो.
0: नजर

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं 90.8 एफएम पर। ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुरुशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम।
2: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो,

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वाकई दिल को सुकून देते हैं ये गाने। इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है, प्राणायाम
0: ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है,
0: ओके ग्रेट ग्रेट,
1: कप्तान साहब, उधर डीआईजी साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे। क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था, आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट कर दी थी, और इसी दौरान जहां जहां मैं सीखने भी गया तो वहां से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 इयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ, उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह। और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर, फिर और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य अभी
0: इस तरह। क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था, तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहां तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए।
0: और आज आप रेडियो पर हैं। कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा
0: जी।
1: कर्नल साहब मिस्टर एस एन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है ग्रेटर नोएडा का, कार्निवल होता है उसमें, फिर एज ए जज भी रहा हूँ, एज ए बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: एप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर,
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप ही की पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए,
0: क्या बात है,

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं उस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे हैं, साथ ही साथ यूं कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है। बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है, खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव मैं सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके
1: मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड, वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप समय देते हैं और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है बैलेंस कैसे रख पाते हैं साथ साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट, बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई बार हमारे एलओटी भी जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेंद्र जी क्या क्या हैं आप,
0: हरफन मौला है, तो, हाँ, शायद ही कोई तो फील्ड आपका बचा हो,
1: अच्छा गाते हैं
0: जी,
1: ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ,
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपलसरी जॉब नहीं है।
0: ओके ग्रेट। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े ट्रस्ट के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं लाइव में, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ उन सबको वो डाउनलोड करके रखते हैं एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ, तो इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट रहती है। एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना उस तरह का लाइव का।
0: ओके तो और मैडम क्या सपोर्ट करती
1: है? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
0: तभी आप बाहर निकल पाते हैं। जी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियां आपकी। चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ। अनन्या आप मुझे बताइए कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं, क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ। हाँ तो अच्छा लगता है ऑफकोर्स।
0: अच्छा हाँ। तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट हैं?
2: अभी 10th.
0: अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी का मास कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है. आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है. मास कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है. अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली कि लोग देख ही रहे हैं, और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं. तो मैं तो इस बात से यही कहूंगा कि आप जरूर सोचिएगा जरूर अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है. फिर लगता है कि नहीं यार, इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए तो उसके बाद हम कुछ जरूर करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है. आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा. क्या नाम है आपका?
3: माय नेम इज आर्यन.
0: आर्यन, आर्यन मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं आर्यन को? नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है. कहाँ ले जाते हैं आप?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं.
0: बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड.
3: सपोर्ट करने में अच्छा लगता है.
0: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है. मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा.
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं पापा को.
0: चलिए, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा और उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा. तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है, जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
1: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और इस दौरान तो क्या कहते हैं, टाइम पर कुछ सिलेक्शन.
0: कोई बात नहीं, जो भी. हाँ प्लीज सुनाइए.
1: एक मैं रफी साहब का दो लाइन गुनगुना रहा हूँ.

0: क्या बात,
1: कल हम कहां तुम कहां।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया रफी साहब और साथ साथ आर डी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो रिश्ते में तो हाँ अमिताभ बच्चन साहब, और शान फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनो श्रोता 90.8 FM पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूँ, चूँकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहाँ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों का जो एक यूँ कहें कि कॉम्पिटिशन है, लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियाँ भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़ें, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरे। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। इफ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करता है। तो फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है नरेंद्र सिंह जी, मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन बस जाते जाते ही कहना चाहता हूँ आपसे बात करके, आपकी फैमिली से बात करके, कि जो बच्चे हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने मन की बात।
1: मैं यही कहना चाहूंगा, अभी टू लाइंस, बीच में मैं फेसबुक पर अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि
0: किस नाम तो से है वो फेसबुक पेज?
1: नरेंद्र सॉन्ग्स, नरेंद्र सॉन्ग्स के नाम से है। तो आप सर्च करेंगे तो आपको खुल जाएगा वो। और ये मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूँ अभी ऑन फ्रेंडशिप
0: जी।
1: तेरे

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

पड़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बात किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुपर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, खूबसूरत फ्रॉम द मूवी स्त्री 2।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जनाब प्यार करते रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, दूसरों की सेहत का ख्याल रखिए, नेचर से प्यार करिए और इस वर्तमान मौसम में आप अपनी सेहत के साथ साथ एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए
1: और साथ ही साथ बीबी की माँ के नाम भी जरूर लगाइएगा पौधा, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
0: हाँ, गरज बरज के साथ चीटें बढ़ सकते हैं। हरियाली का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी, हरियाली आएगी और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बनकर रहेगा। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:12 हो चुके हैं और 27 तारीख है, जुलाई का महीना। देखते हैं हमारे आसपास यानी कि मौसम का जो मिजाज है वो क्या कह रही है, अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यानी कि दिल्ली NCR और ग्रेटर नोएडा में आज 27 जुलाई को दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, ऐसा कह रहा है IMD यानी कि मौसम विभाग। अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम की स्थिति जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खास बात यह है कि हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं आसपास दिल्ली NCR में और दोपहर या शाम तक आंधी पानी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो इस वक्त 33 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राहत यह कि उमस की अगर हम बात करें तो हवा में नमी की वजह से उमस बनी रहेगी, लेकिन बारिश होने से गर्मी में काफी राहत आपको महसूस होगी। और दिल्ली ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे NCR में अगले 5 दिनों तक बादलों की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऑन रोड जब आप आते हैं तो गड्ढों को देखकर सोचकर संभल कर चलेगा, क्योंकि आप ऑन रोड उसी रास्ते से आ जा रहे हैं और ये भी सच है कि ऑन रोड आपको व्हीकल वो कहते ना सीवर के गड्ढे नजर नहीं आते, ढक्कन नजर नहीं आता क्योंकि वो ढक्कन कम लगे होते हैं ना। और साथ ही साथ बारिश के मौसम में अपना बचाव करिए, बिजली का करंट कहीं पर भी उतर सकता है, ऐसे पोलों से सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, नेचर का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मंडे मॉर्निंग बोले तो एनर्जी वाला दिन, उत्साह के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। ट्रैफिक थोड़ा स्लो है क्योंकि ट्रैफिक बोले तो मंडे का दिन है, इसलिए गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसी जन संदेश सुनो शारदा 90.8 FM, एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से हर रोज हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। वर्तमान समय में अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाए तो यकीन मानिए कि आप तंदुरुस्त रहेंगे, अदरवाइज दिक्कतें परेशानियां आपके साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और आपके पालतू जानवरों के साथ भी लगी रह सकती हैं। सो प्लीज ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और उनका भी ध्यान रखिए। यानी कि वर्तमान समय में साफ सफाई का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, लापरवाही नहीं बरतनी है, बारिश के मौसम में दिक्कतें परेशानियां भी आपके साथ जुड़ जाती है। चलिए, हम चाहते हैं कि आपके साथ ट्रैफिक न जुड़े, यानी कि दिक्कत परेशानी आपको न हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको जानना समझना बहुत जरूरी कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। उसके बारे में जब मालूम होगी तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंध और अलर्ट की जो अपडेट निकलकर सामने ये आ रही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के चलते उन बातों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली जिले के जो जिले हैं नई दिल्ली के कई हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 निषेधाज्ञा लागू है। तो इस निषेधाज्ञा लागू को ध्यान में रखिएगा, बहुत सोचकर समझकर आप आगे बढ़ेगा। कई सारी वजह हैं, जैसे कि अभी प्रोटेस्ट हुआ, उसका समापन हो गया, कुछ रैली निकली, वो भी बहुत अच्छी तरीके से एक समाधान इसका ढूंढा गया। अब आने वाले समय में 15 अगस्त है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप ऑन रोड आएंगे तो आपकी कागजी कार्रवाई तंदुरुस्त होनी चाहिए, आपके पास आपका पहचान पत्र और भी सारे प्रूफ होने चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेगा। तो दिल्ली पुलिस ने आम जनता को सलाह दी कि वो जब तक ज़रूरी न हो नई दिल्ली क्षेत्र की तरफ जाने से आप बचें और वैकल्पिक मार्गों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान में रखिएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा यानी कि नॉलेज पार्क पर एमटेक्स एक फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है, तो उसके चलते भी यहाँ पर सख्त सुरक्षा प्रबंध है। और बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित आगे बढ़िए और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करेगा। रंभा हो मधुबंती बागची की आवाज सिर्फ सुरुषादा 90.8 FM पर फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:29 हो चुके हैं। 27 तारीख यानी कि 27 जुलाई सोमवार का दिन, जब बड़े बड़े लोग ऐसे जुड़ते हैं और वो कहते हैं कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, तो मुझे लगता है कि आपको सुनना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक आधार यही होता है कि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। जबरदस्त इन्फोटेनमेंट होता है, ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको सुनना चाहिए और हमसे जुड़ना चाहिए। 0120 यानी कि 120 शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा। 40-60-205 इसके जरिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं जब आप हमें कॉल करेंगे। इसके अलावा 90.8fm@sharda.tc.in के जरिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल जोल के माध्यम से मेल बढ़ा सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। वर्तमान समय में एडमिशन के दौर चल रहे हैं, तो एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को समझने को मिलेंगे। पढ़ाई का जब हम जिक्र करते हैं, एक परीक्षा का जिक्र करते हैं, तो निश्चित तौर पर हर कोई चाहता है कि पेपर लीक ना हो। इस समस्या का समाधान आज संसद में एक बिल पेश किया जा रहा है, संशोधन के साथ बिल पेश किया जा रहा है, जिससे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो परीक्षार्थी हैं एक पारदर्शिता नजर आएगी, सख्त कानून बनेगा, फाइन लगेगा, जेल होगी, तो निश्चित तौर पर हमें योग्य व्यक्ति हमें मिलेंगे। कोई नहीं चाहता कि एक ऐसे व्यक्ति से हम इलाज कराएं जो नकल से पास हुआ हो, जिसके पास योग्यता न हो। हम चाहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति से हम मिलें, एक योग्य व्यक्ति से हम बात करें, एक योग्य व्यक्ति से हम अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके के बिल आएंगे, समस्या का समाधान ढूंढा जाता है बातचीत के जरिए, बातचीत से एक समस्या का समाधान निकलता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए हमें एक आशान्वित रहना होगा, उम्मीद करनी होगी कि सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

0: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: ब्रेक पर जाने से पहले अभी आपने एक छोटी सी आवाज सुनी जब हम वेलकम बैक कर रहे हैं कि रौनक भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां जब हमारे साथ आती हैं, हमसे बात करती हैं और कहते हैं कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, तो निश्चित तौर पर एक खुशी होती है। और खुशी तब होती है जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, ऑन रोड धरातल पर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और एक ऐसे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई के जरिए भी हम लोगों से मिलते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि प्लीज प्लीज ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। यकीन मानिए कि जब आप सेहतमंद हैं तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी आप हैं, दौलतमंद आदमी आप हैं, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूँ भारतवासियों की, मैं बात कर रहा हूँ उस सपने की, जिस सपने को आप जीना चाहते हैं, उस सपने को जब आप साकार करते हैं तो निश्चित तौर पर एक कहानी निकल कर सामने आती है कि इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने, इस महिला ने कितनी मेहनत की है और इसके पीछे किस किस का हाथ है। निश्चित तौर पर एक कोच का हाथ होता है जब आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। एक ऐसी कहानी आज हमारे सामने आ रही है कि मजदूर से मेडलिस्ट तक, वो कहते हैं कि कभी 200 रुपए के लिए उन्होंने काम किया। ऋषिकांत ने, मैं ऋषिकांत सिंह की बात कर रहा हूँ, भारत के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ सिल्वर जीत लिया है, तो इस बात के लिए लख लख बधाई, बहुत बहुत हृदुआएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसका जो श्रेय है वो अपने कोच साहब को देते हैं। निश्चित तौर पर जब आप मेहनत करते हैं और आपकी

मेहनत के पीछे आपके कोच होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं और बहुत सारी दिली दुआएं होती हैं, शुभकामनाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एक सपना देखना होगा, सपने को साकार करने के लिए एक ताना बाना बुनना होगा और यकीन मानिए कि दिक्कतें परेशानियां आएंगी, लेकिन दिक्कतें परेशानियों को पार कर कर ही आपकी कहानी बनती है। तो आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋषिकांत की इस किस्मत पर, इस मेहनत पर। उनको सुरुशादा 90.8 FM दिल से सलाम बधाई देता है। नदियों पार, सच बात तो ये कि नदियां पार आपको जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन उसके बाद आपकी जय जय। रूही एल्बम से सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर रश्मित कौर शमूर की आवाज, जानवी कपूर पर फिल्माया गया गाना, सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। इस गाने को सुनने के बाद वेलकम बैक अंतरा मित्रा, साथ ही साथ दर्शन रावल और सोनी का लेबल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम। जी हाँ, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। खास बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर युवा सुनता है, जानता है, समझता है। ये बात दरअसल मैं क्यों कर रहा हूँ, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत उन्होंने युवाओं से संवाद किया, बातचीत की और वो कहते हैं कि जब देश के युवा सीधे तौर पर राष्ट्र की चुनौतियों और अवसरों से जुड़ते हैं तो देश का भविष्य और अधिक मजबूत उज्ज्वल बनता है। वो कहते हैं कि युवाओं को भारत के सीमावर्ती गांवों का दौरा करने और वहां के लोगों के जीवन, संस्कृति और चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित उन्होंने किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस प्रोग्राम के तहत इस प्रोग्राम में लगभग एक नहीं दो नहीं 3 लाख यूथ ने, युवा साथियों ने इसमें भाग लिया और जिनमें से 400 से ज्यादा युवाओं को लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के गांवों में समय बिताने का मौका मिला और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म की सराहना की और जिससे देश के करोड़ों युवा जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मन की बात के माध्यम से हैकाथॉन ओलंपियाड का भी जिक्र उन्होंने किया और कारगिल दिवस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और देश के तमाम वीर जवानों के बलिदान और साहस की गाथाओं से प्रेरणा लेने की उन्होंने सीख दी। निश्चित तौर पर हम अपने सेनानियों को नहीं भूल सकते जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन तमाम सेनानियों को दिल से सलाम करता है, शत शत नमन करता है सुरू शारदा 90.8 एफएम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल सुरू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। दिल दिया गलना

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

क्या बात है, इंकलाबी जिद्दी। अगर आप जिद रखते हैं कुछ कर गुजरने की तो निश्चित तौर पर आपके सपने साकार हो सकते हैं। और जिद है और आप जिद्दी हैं, सकारात्मक दिशा में उस कदम को आप आगे बढ़ाइए तो निश्चित तौर पर आपका सपना आपका अपना होगा।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आरजे शशि कपूर। श्रोताओं, कहते हैं कि घर की असली खुशहाली तभी होती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हों, लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण सिर्फ बच्चों के शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि उनके दिमाग के विकास पर भी असर डालता है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं और इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चों के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं और इन सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं आपकी जानी पहचानी टीकन भाभी। भाभी, आप हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती हैं। भाभी, बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी कैसे पहचान सकते हैं, इसे समझना जरूरी क्यों है?
1: सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए कि बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए कुछ संकेत साफ दिखाई देते हैं। पहला संकेत है बच्चे का वजन। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन बढ़ नहीं रहा तो ये पहली चेतावनी है। दूसरा है सुस्ती। कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त दिखते हैं। तीसरा लक्षण बाल और त्वचा है। कुपोषित बच्चे के बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हैं, त्वचा भी सूखी दिख सकती है। चौथा है भूख नहीं लगना। बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है। पांचवा है बीमारियां। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण के शिकार होते हैं।
0: टीकन भाभी, हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण जान लिए हैं, अब आप ये बताइए कि इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल शशि भैया, कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होती है। इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना जरूरी है। जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखें। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फल का गूदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल, सब्जी, फल, अनाज और दूध दही जैसे पोषक खाना दे सकते हैं। साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है। डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बीमारियों से बचाता है। परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है। परिवार को खाना बनाने, दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद भी करनी चाहिए।
0: टीकन भाभी, क्या बच्चे के दिमागी विकास में पोषण का असर होता है?
1: हाँ जी, बिल्कुल होता है। पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इस मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडी देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में भी मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा उसका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होगा।
0: टीकन भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देता है, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है। फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक भी है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले, ताकि वे स्वस्थ हों।
0: टीकन भाभी, एक जरूरी बात भी बताइए, परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है?
1: देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादी, दादा, पापा खाना बनाने में हाथ बटाएं, तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत को मजबूत बनाता है।
0: ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं टीकन भाभी आपने बताई, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
1: ये तो बहुत ही जरूरी बात है और ध्यान रखने योग्य बात है। तो गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना कम खाना चाहिए और साफ पानी पीना भी जरूरी है।
0: टीकन भाभी, अक्सर डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं, ये गोलियां जरूरी क्यों होती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए?
1: देखिए, जब महिला गर्भवती होती है ना, तो उसके खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगते हैं। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो सकता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है।
0: टीकन भाभी, एक और सवाल, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए?
1: माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुण भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही जरूर खाना चाहिए। गेहूं, चावल, बाजरा जैसे अनाज भी ताकत देते हैं।
0: बिल्कुल। और टिकन भाभी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियां और दूध दही क्यों जरूरी है?
1: हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती हैं। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी कैल्शियम देते हैं, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है।
0: टीकन भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ना खाया जाए तो फिर उसके लिए क्या अच्छा विकल्प है?
1: देखिए, जो माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो है पोषण। अगर घर में मांसाहार होता है और माँ उसे खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस मछली और अंडे में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए बहुत जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो भी उसे भरपूर ताकत और सेहत मिल सकती है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है। दाल और पनीर से प्रोटीन मिलता है और दूध दही से हड्डियां मजबूत रहती है। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा।
0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। कुपोषण का मतलब है कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही, इससे उसका वजन कम रह जाता है, अक्सर बीमार पड़ने लगता है और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चों को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण और साफ सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाएं तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत बनेगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ का पोषण भी बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियां, फल, दूध दही जैसी चीजें माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। याद रखिए, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध होगा।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही लाभ कई।
1: सेहत सही लाभ कई।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hi, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।
3: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

0: अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
7: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
8: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
7: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
8: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
7: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
8: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
7: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
8: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
9: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं

किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है, तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की, दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की, किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की, फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत
अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: हाय, मैं हूं रण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस से टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sarah School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका मुख्य घटक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को उसकी नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलता है और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, विशेषकर आर्थिक व्यवधानों के समय में। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

0: किसान मित्र, अभी आप कोशिंदर खदाना से ये रागनी सुन रहे थे और किस्सा था हीर रांचे का। किसान मित्रों, खेती किसानी में आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं और इन तकनीकों का सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हमारे किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता। तो किसान मित्रों, आप भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बेमौसम की फसलों को उगा करके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कृषि में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।
1: तेरे

0: अली के द्वारा दादा लक्ष्मीचंद जी ने बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
1: भजन कर ले।
0: अगर जीवन में अच्छा कार्य किया होगा तो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। लेकिन जानते सबे बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान आप किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से आपको बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के बैंक में जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर आपकी फसल का बीमा हो जाता है। अगर किसी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपकी फसल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई यानी कि आपको वित्तीय सहायता दी जा सके। तो किसान भाइयों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से एक रागनी, खिस्सा रहेगा महाभारत का।
1: सत्य

0: हस्तिनापुर में दुर्योधन यदि ऐसा हो गया तो यह हस्तिनापुर नहीं रहेगा।
1: ए दासी की औलाद, ये हस्तिनापुर तो हस्तिनापुर रहेगा, लेकिन याद रहे

बसरी। ये मक्का या बाजरा रखाने वाला आदमी है, ये शोर मचाएगा। मैं खूंटा ठोकने वाला आदमी हूँ, तुम अपना काम करो जो हमने आदेश दिया है। पीछे हट जाओ, साधन रोटी से पीछे हट जाओ।

0: बात,
1: हमने तुम्हें आदेश दे रखा है, तुम इस महात्मा विदुर के गले पर छुरा क्यों नहीं चलाते?
0: नहीं दुशासन, ये सती वीर पतिव्रता
1: जिभ्या करो, जिभ्या

0: हुआ।
1: अरे यो ऋषि पाल का वैगा बिल्कुल, अरे नीति का तन ज्ञान नहीं।
2: ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट

0: मुक्ता मर्तुलिया से। डॉक्टर मुक्ता, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में औरतों का जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है या फिर जिस भी तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिविटी से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में हो रहा है?
1: किरण जी, देखिए ये बहुत ही एक संगीन मुद्दा है जिस विषय में हम आज बात कर रहे हैं, और महिलाओं का मीडिया में जो चरित्र चित्रण है इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते भी रहे हैं, काफी फ्रूटफुल भी हैं। तो अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो दरअसल मीडिया काफी अच्छे तरीके से आजकल जो विमेन है या जो महिलाएं हैं उनका पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, अगर वहां पे आप देखेंगे तो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज विमेन्स का रहा है हमेशा से मीडिया में, हम रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया हमेशा एक्यूज्ड भी होता रहा है इस चीज को लेके कि उन्होंने शायद महिलाओं को कहीं एक टाइप्ड तरीके में बांध दिया है, तो उसको वो कहीं वो रूढ़िवादी जो विचारधारा है उसे तोड़ रहा है। जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं जहां पे दिखाया जाता है कि पहले ये होता था कि महिलाओं का काम है वो घर की देखभाल करेंगे, घर में मतलब अपने हस्बैंड्स बच्चे को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है। वो चाहे आप धारा के एड्स हों या कैसे भी, जहाँ पे ये है कि अब वो वॉइसलेस नहीं होकर उनका घर की जिम्मेदारियों में और घर की कहना जैसे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं उनमें उनका पक्ष रहता है या वो जो कहेंगी वो माना जाता है। तो ये जो एड्स हैं ये बहुत तरीके से अगर बोले तो सोसाइटी में हम, क्योंकि मीडिया हमेशा सोसाइटी का एक मिरर रहा, जो सोसाइटी में होता है वो मीडिया में दिखता है और जो मीडिया में दिख रहा है वो सोसाइटी में होना शुरू होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वहाँ पे मीडिया का जो पोर्ट्रेल है, मतलब मीडिया में जो विमेन्स का पोर्ट्रेल है वो बहुत हद तक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जा रहा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ आओ बहन चुगली करें इसमें नहीं दबके रह गई हैं, वो अब घर में उतना ही हिस्सेदारी निभा रही हैं जितना कि हमेशा से पुरुष निभाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया काफी अच्छा कर रहा है व्हेन इट कम्स टू यू नो द पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन इंडिया मीडिया।
0: तो डॉक्टर मुक्ता से जब हमने जाना कि महिलाओं को मीडिया में जो उनका चित्रण किया जा रहा है उसकी पॉजिटिव के बारे में जाना, तो इसमें अब मैं डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी से बात करना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर मुक्ता जी ने बताया कि अब उनका पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि पुराने अगर हम सिर्फ 10 या 15 साल पहले ही जाएं तो वहां से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई की जा रही थी या फिर सिर्फ सेक्सुअलिज्म के लिए यूज किया जा रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सिनेमा हो, उन्हें एक बेहतरीन रोल देने के लिए, या फिर सिनेमा में अगर हम बात करें तो वो उनकी जो विमेन ओरिएंटेड मूवीज थी वो कितनी चल रही थी या फिर उनमें उनको किस तरह के रोल्स दिए जा रहे थे, सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस था? तो तब की एरा में, ज्यादा नहीं 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और आज में आप कितना फर्क महसूस करते हैं?
2: देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप किसी महिला के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए शुरू करते हैं तो सोच नहीं समझ रखिए। आए दिन ऑटो के पीछे जो मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये महज शब्द नहीं है। यहाँ सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस जीवन की बात हो रही है जो प्रकृति आपको देती है। जो प्रकृति की बात आती है तो प्राकृतिक रूप से आप समझिए कि जितना एक पुरुष के पास ये राइट्स है उतना ही उस महिला के पास भी राइट्स है। पहले तो वो दायरे को समझना जरूरी है जो इंसान ने स्वयं ही बना दिया है, और जब इसको बनाता है तो समझिए आप एक दूसरे पर हावी हो, अब हावी हो जाते हैं तो ना वहाँ पे जीवन है ना मृत्यु है, यहाँ ना मीडिया रहती है ना मीडियम रहता है। माध्यम तो हम और आप हैं और माध्यम बनने के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। अब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने होकर आया जो वॉइस फॉर वॉइसलेस, यहाँ सिर्फ वॉइस फॉर वॉइसलेस वाली बात है, तो ये मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? जब मीडिया कोई चीज दिखाता है तब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आती है कि नहीं ये सही दिखा रहा है, ये चीज तो ये तालीम तो आपको घर से ही शुरू करनी पड़ेगी कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक कब होगी। सोच सकारात्मक जब आप संवाद करेंगे, बिना संवाद के कोई भी चीज। अब चलते हैं 15-20 साल पहले, 15-20 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी नहीं थी किताबों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, या कई ऐसे शिक्षाविद हैं या कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं और कई जो है कई ऐसे कार्य हुए हैं जो सामने आए हैं और उसके बारे में हम जान पाए हैं। लेकिन जानना ही सिर्फ जरूरत नहीं थी, समझ बनाना बहुत जरूरी है। जहां तक मीडिया एक महिला को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करता आया है, उसको सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से परसीव कर रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, इसकी समझ वो सामाजिक दायरे में समझना बहुत जरूरी है। मीडिया समाज से है, समाज मीडिया से है, परस्पर मेलभाव बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए साथ समझ, महिलाओं का कहिए प्राकृतिक रूप से जो संरचना है पुरुष से बिल्कुल अलग है। अब पुरुषों के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, समझ बिठाएं, क्योंकि बिना ना सामंजस्य और

0: संवाद के कोई भी चीज संभव नहीं। तो मीडिया है तो मीडियम है, आप हैं तो हम हैं, इस तरीके से। तो महिलाओं, मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये कह देने से नहीं, इसको सार्थक करना, हम सब के लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है।
1: उत्सव जी, जैसे कि आपने बात कही अभी कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये आपने एक एथिकल बात कही है जो कि हमारे समाज में होनी चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि पिछले 15 साल में आप कितना डिफरेंस अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले के एडवर्टाइजमेंट्स देखते थे तो उसमें महिलाओं को एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए, एक मतलब आज्ञाकारी महिला होनी चाहिए, वो महिला जो सिर्फ घर का काम कर रही है, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रही है, वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कमी रह ना जाए, और अगर कमी रह रही है तो उसे सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हो, वहाँ पर उसे एक नेगेटिव रोल के तौर पर उसका पोर्ट्रेल किया जाता है। जैसे हम डेली सोप्स भी देख लें, तो जो महिला बगावती है या फिर जो महिला ये सब चीजें नहीं कर रही है, घर की जिम्मेदारियां नहीं कर रही है, तो हम उसे एक नेगेटिव रोल में देखते हैं।
0: मैंने आपको इस बीच में एक शब्द कहा था कि मीडिया जो दिखा रही है वो आदमी सबसे पहले समझ जाता है, और यहाँ पे सामने बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा है या समझ रहा है, उसको समझने में हम शायद पूरा जीवन लगा देते हैं। तो शायद संवाद की कमी है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज के साथ घिरे हुए हैं कि खाना तक ऑर्डर करने के लिए अपनी माँ से ना कह के अब जोमेटो हमारी माँ, तो बड़ा जो है द्वंद्व पैदा हो रहा है। इमोशन जो है, एक तरफ टेक्नोलॉजी आपको सहूलियत देता है, दूसरी तरफ रिलेशनल आइडियाज को समझने में द्वंद्व पैदा करता है। जरा सी दूरी हुई नहीं कि आपकी समझ गड़बड़ा जाती है और आप बेचैन से हो जाते हैं। मीडिया अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहा है, बहुत तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि मीडिया, कई ऐसे मीडियाज हैं, मैं किसी मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कई ऐसे मीडियाज हैं जो शायद समय से परे होकर के कई चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। आज सोशल मीडिया के दायरे में देखें तो फेक न्यूज का जो एक दौर चला, तो उसमें फेक न्यूज लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिला सिर्फ महिला है, पुरुष सिर्फ पुरुष है।
1: जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो दोनों जो है वो एक डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, तो उनको उन्हीं की तरह से सम्मान मिलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सीपी रश्मि जी से। रश्मि जी, आज हम जब देख रहे हैं सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर हम थिएटर भी देखते हैं, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा खूबसूरत महिलाएं ही दिखाई देती हैं। वहाँ पर जगह नहीं है भद्देपन की, लेकिन महिलाएं तो वो भी हैं, राइट्स उनके भी हैं, टैलेंट उनके अंदर भी है। तो आप क्या सोचती हैं कि आज की मीडिया में जो बॉडी इमेज या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनमें कोई बदलाव देख रही हैं आप पिछले 15 सालों में?
2: किरण जी, बहुत ही ज्यादा बदलाव है। ठीक है, अभी आपने दो बातें करी, एक कि सिर्फ सुंदर महिलाओं को देखते हैं, बट जो कि डॉक्टर मुक्ता ने बोला कि कैसे चीजें बदली और कैसे मीडिया का पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई कि कैसे, मतलब आजकल आप देखेंगे प्लस साइजेस के भी एड्स आ रहे हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिपस्टिक फेमिनिज्म जो कि आजकल चल रहा है, जिसमें हर औरत को बोला जाता है, जहाँ पे कि मैं डॉक्टर उत्सव की भी बात को लेकर आना चाहूंगी, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो औरत एम्पावर्ड है या सशक्त है जो कि किसी भी टाइम महीने के उन दिनों में भी सफेद पैंट पहन के दौड़ रही है। ठीक है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मीडिया आज के दौर में इज एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब उस सेक्टर को, उसको क्या कहते हैं, टारगेट किया जा रहा है जो कि कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब जैसे कि आज की तारीख में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत है जहाँ पे हम बहुत ऑनलाइन कपड़े खरीदने लगे हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप स्टोर पे जाते थे, आपको एक्सेल और डबल एक्सेल कपड़े मिलना मुश्किल होते थे, वहाँ आज आपको 7XL से लेके 8XL तक के कपड़े आराम से मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये समझा है कि ये भी एक क्या कहते हैं
1: ग्रुप है
2: जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसे हम कपड़े बेच सकते हैं। हमारी इंडियन संस्कृति में एक बहुत चीज है कि कपड़ा वो पहनो जो कि आपको कंफर्टेबल हो, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि मॉडल्स होती हैं जो कि टाइट जीन्स पहनती हैं, 15XL तक की मॉडल होती हैं, चाहे वो देखने में अच्छी नहीं लगे, बट बोला जाता है कि ये नारी सशक्तिकरण का एक रूप है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि वो खुद सोचे कि क्या सही है गलत है, सबको पता है
1: जी।
2: बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बॉडी इमेज की बात आ रही है उसको एक नए मार्केट को डेवलप किया जा रहा है
1: जी।
2: ठीक है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एक तरफ हम ये प्रमोट कर रहे हैं चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, सब अच्छा है, सब क्या कहते हैं हर औरत का एक रूप है, वहीं दूसरी तरफ फिल्टर्स
1: जी
2: को भी भी प्रमोट किया जा रहा है, अगर मैं मोटी हूँ या कोई पतला है तो अलग एक पर्टिकुलर एंगल से ही फोटो लेगा, उसको प्रमोट किया जा रहा है। कोई भी अपनी नेचुरल फोटो डालना नहीं चाह रहा है इंटरनेट पे। अगर आप किसी लोगों को डीपी के थ्रू जानते हैं और उन्हें रियल में मिलेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, स्पेशली फीमेल ज्यादा क्या कहते हैं फिल्टर्स का प्रयोग करती हैं।
1: तो आपको क्या लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर महिलाओं में किसी तरह का प्रेशर है?
2: बहुत प्रेशर है, ऐसी बहुत रिसर्च की गई है, अगर आप जाएंगे इंटरनेट में पढ़ेंगे, इसकी वजह से बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। लोग औरतें मतलब ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग अपनी डीपीज में फिल्टर्स यूज कर करके, स्पेशली स्नैपचैट जैसे फिल्टर, उसमें बहुत तरीके के फिल्टर्स हैं, कि उन्होंने अपना जो ऑनलाइन स्पेशली जो इंटरनेट पे अपना रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से अपने आपको प्रस्तुत किया है वो इस तौर पे किया है कि वो अपने कुछ इंटरनेट के दोस्तों से मिलने से पहले जाके प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। तो मतलब इतना असर पड़ रहा है। तो अभी क्या है ना, हम एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो कंफ्यूज्ड है, जहाँ पे हर बात को किया जा रहा है क्योंकि हर तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक फोन से लेके फिल्टर से लेके अलग तरीके के कपड़े से लेके मेकअप से लेके सब बिक रहा है, और हर चीज को बेचने के लिए एक इस तरीके के सूडो फेमिनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें फीड की जा रही है जिसका फेमिनिज्म या एक औरत होने से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये बात जैसे कि डॉक्टर उत्सव ने कहा समझना जरूरी है, मीडिया में जो दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। मीडिया आजकल, हम शायद वो उस जमाने का मीडिया नहीं रह गया जिसे बहुत मॉनिटर करके प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने। आजकल इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जिसमें कंटेंट कोई भी दे रहा है और हम उन कंटेंट को देख रहे हैं। तो जहाँ पे हमें हर चीज को बहुत सोच समझ के उस चीज को कहते हैं ना आगे ले जा, अगर कोई मुझे कहेगा ये करने से आप एम्पावर्ड हो, तो आपको अपने आप से 5 सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं एम्पावर्ड हूंगी ये करने से या नहीं हूंगी। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बॉडी, आपकी बॉडी क्या है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स क्या है सुंदर होने के, ठीक है, क्या चीज आपको डिप्रेस्ड कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, क्या चीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है।
1: डॉक्टर मुक्ता से मैं इसी के बारे में कॉन्टिन्यूटी में ही एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बोला, एक वर्ड यूज किया सूडो फेमिनिज्म, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओपनली किसी भी चीज के बारे में बात करना मीडिया में, ओपनली अपने आप को प्रेजेंट करना, आजकल फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई है, आप इससे कितना वो रखती हैं?
3: जी, अगर रश्मि जी की बात बोलूं तो मैं आई थिंक पूरा उन्हीं के लाइन में पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हुए बात करूंगी। लेकिन हाँ, ये वो आप कहेंगे ना सामाजिक कॉन्सेप्ट हैं जो समय के साथ बदलते भी हैं। सूडो फेमिनिज्म जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है आज उसकी एक डेफिनेशन है आने वाले समय में, और उसमें और डेवलप हो डेफिनेशन। तो अगर हम मीडिया में ही वुमेन के पोर्ट्रेयल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। अब वो सशक्तिकरण जो है उसके अपने ही बहुत सारे डेफिनेशन हैं। हमें लगता है कि यदि महिला आजाद है, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए आजाद है, वो सशक्त है। अगर वो अपना परिवार चलाने में इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड की भागीदारी कर रही है तो वो सशक्त है, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम सशक्तिकरण के नाम पे मीडिया में क्या परोस रहे हैं। इसमें जैसे आप देखें कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें या सिनेमा की बात करें ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक हमें बड़ा कंटेंट मिलता है, एडवर्टीजमेंट में छोटे कंटेंट्स मिलते हैं। तो जैसे एक सीरीज है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स चल रहे हैं या उसके फर्दर सीरीज चल रहे हैं, 4 More Shots Please आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें भी महिलाएं हैं। लेकिन क्या वहां जो पोर्ट्रेल है हम उसे सशक्तिकरण कहेंगे? मतलब बीइंग अ वुमन, मैंने उसका एक एपिसोड या दो देखे, मुझे वो लगा कि नहीं, वो पोर्ट्रेल ऑफ वुमन नहीं चाहती मैं। मतलब मैं भी एक महिला हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो, क्योंकि वो मैं उसके साथ एसोसिएट अपने आप को नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि समाज में महिलाओं को रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी महिला मैं नजर आऊं, और मैं हूं भी नहीं, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती उससे। तो अगर मीडिया की जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ पोर्ट्रे करें जिसमें जो महिलाएं हैं वो वैसी दिखें। सशक्तिकरण के नाम पर कुछ बहुत अलग तरीके से उन्हें पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना। तो मैं आई थिंक यही कहूंगी, आप सूडो जर्नलिज्म या सूडो सॉरी फेमिनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा ना सबका अपना देखने का नजरिया है, ठीक। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैंने बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं के लिए अच्छी बातें करते सुना है, और मैंने उन्हीं लोगों के अगेंस्ट लोगों को बोलते भी सुना है कि वो तो फेमिनिस्ट है। तो ये जो एक टाइप हो जाते हैं ना कि आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आप फेमिनिस्ट है, ये विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मीडिया कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कंज्यूमरिज्म है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ कॉन्टेंट बनाए और इन रिटर्न हमारे को कुछ भी नहीं मिले, ये भी नहीं हो सकता। बट हाँ, कितनी जरूरत है और वो कैसे पहुंचा पहुंचाया जाए। जैसे उत्सव जी ने भी बहुत अच्छे से बोला, उन्होंने बताया कि हमें समझ डेवलप करनी
1: समझ
3: है, और आई थिंक यही सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया दोनों रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ हमारा ऑडियंस इतना समझदार होना चाहिए कि जो उसे दिखाया जा रहा है उसे कैसे
1: परसीव करता है। बिल्कुल। डिस्कशन में हमारे साथ प्रवीण जैन जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमारे बाकी अतिथियों ने बताया कि मीडिया में वुमेन को किस तरह से आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर पहले से अब तक कितना बदलाव आया है, उसी को ही आगे ले जाते हुए मैं आपसे सिनेमा को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी कि सिनेमा में जैसे कि पहले हम देखते थे तो औरतों के रोल्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हीरो के आजू बाजू नाचने के या उनसे सिर्फ उनका लव इंटरेस्ट होना, सिर्फ इतना ही उनका होता था, लेकिन अब जो हम सिनेमा देख रहे हैं उसमें अब उन्हें बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, मेन लीड्स में भी दिखाया जा रहा है, पूरी की पूरी सीरीज भी विमेन ओरिएंटेड है जो कि बहुत हिट भी हो रही है, लेकिन अभी भी कई सारी सीरीज और मूवीज में हम देखते हैं कि उन्हें भोग की वस्तु के तौर पर ही दिखाया जाता है। तो आप किस तरह से अभी जान पा रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है?
4: मैम, ऐसा है कि आज से 15 से 20 साल पहले भी जो सिनेमा बनता था उसमें भी कई जो फीमेल कैरेक्टर होती थी वो लीड रोल करती थी, जैसे श्रीदेवी थी, रेखा थी, उन्होंने फीमेल रोल करे हैं। हाँ, स्मिता पाटिल, बट स्मिता पाटिल को छोड़ दे तो श्रीदेवी के भी जो लीड रोल थे वो बेसिकली हीरोइन टाइप ही थे, उसमें उनका पोर्ट्रेल एक हीरोइन या गर्लफ्रेंड का रोल ही निभाने का होता था। बट अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नए नए टाइप की वेरियस सीरीजेस आ रही है जहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। कि पहले होता था अगर एक लेडी फीमेल है तो वो फीमेल है, बट अभी दिखा रहे एक लेडी फीमेल भी है, वो गृहिणी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है और सारे रोल एक साथ निभा रही है और अपना काम कर रही है। मतलब आपको देख के लगेगा हाँ यार ये वुमेन तो मेरे आसपास ही कहीं होती हो, पर वो हो सकता है पुलिस वाली हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो या किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी उसका जो प्रतिशत है अगर हम देखें कि मेल प्रतिशत जो फिल्में आती हैं ओटीटी आती है उसके मुकाबले कम है, और एक दो कुछ को छोड़ दिया जाए तो उनमें ज्यादातर कुछ में उनको ग्लैमरस ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। इवन इन सम कॉप फिल्म तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कॉप है, फीमेल है, स्ट्रॉन्ग है,
1: बट उसमें भी पूरा ग्लैमर
4: घुसा दिया जाए कि वो हैज टू बी लाइक स्लिम फिट फाइटर टाइप की। बट ऐसा जरूरी नहीं हर औरत स्लिम फिट वैसी ही हो लेकिन वो पोर्ट्रेट पुलिस वाली ना हो सकती हो, जबकि रियल लाइफ में हम देखें तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो प्रतिशत कम है और इसमें समाज को औरतों को भी स्वीकार करने की जरूरत है।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर साधारण पुलिस वाली को देखा जाए जो हमारे समाज में हम देखते ही हैं आते जाते जाए, वो ट्रैफिक पुलिस में हो या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, तो उनका जो आउटफिट है वो सेम आउटफिट आप मूवी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि मेल्स के लिए हम यूज करते हैं, पर फीमेल्स के लिए जो आउटफिट यूज किया जाता है वो उसमें भी वो लोग
4: ग्लैमर
1: और इस तरह की चीजें डाल देते हैं,
4: फिटनेस को दिखाया जा रहा है। जबरदस्ती भाई, आप कॉप एक जो इंटेलिजेंट कॉप होता है उसकी बुद्धि से उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, ना कि उसकी फिटनेस अच्छी चीज होती है, लेकिन वो एक प्रायोरिटी नहीं होती कि वो स्लिम फिटी हो हमेशा। तो ये मेरे को लगे रीजन है कि अभी भी मीडिया में इस तरह का पोर्ट्रेल कम किया जा रहा है जो कि इसको बढ़ाने की जरूरत है, और लोगों को भी ऐसे अपनी समझ इस बारे में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि समझ विकसित करने की जरूरत है, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
1: जी, आपने बहुत सही बात करी प्रवीण जी। उत्सव जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हैं तो टीवी न्यूज चैनल में हमने शुरू से ही देखा है कि विमेन जो है वो सॉफ्ट न्यूज कवर कर रही हैं, पेज थ्री न्यूज कवर कर रही हैं, मेल्स जो है वो हार्ड न्यूज कवर कर रहे हैं, या फिर औरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए बनी हुई है कि कैमरे के सामने स्क्रीन पे बैठना है। उनमें भी बहुत सिलेक्टेड विमेन ही है जो आज ऊंचाइयों पर है, और उनके साथ भी अगर हम देखा जाए तो उसमें भी खूबसूरत महिलाएं ही हैं ज्यादातर। तो आपको ये क्या लग रहा है कि अभी भी हमारा यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन है या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन है या बॉडी इमेज जिस तरह की है यही चीज आज भी काम कर रही है?
0: जहाँ तक आपने कहा खूबसूरत होना, एक न्यूज एंकर जो मैं डीडी नेशनल पे सुना करता था, सुकन्या बाला कृष्णा
1: जी,
0: जिनको देख के ही ऐसा भारतीयता की जो महक होती है जिस तरीके से वो, लेकिन आज मीडिया ने जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मीडिया जो चीज आपको देगा वही आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ पे कई ऐसी कम्युनिकेशन की थ्योरीज अप्लाई करने के बाद और बेतुके ऐसे कई सवाल खड़े करने के बाद, क्योंकि कई मीडिया सिर्फ टीआरपी को लेकर काम कर रही होते हैं, वो संजीदा नहीं है महिला को लेकर के, और जहाँ कोई संजीदगी नहीं है वहाँ पे विचार नहीं पनपेगा। पहले विचारों के साथ अभ्यास किया जाता था, जहाँ अभ्यास खत्म हो गया तो आप कुछ भी परोस सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके पास आज की डेट में समय नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन शॉर्ट ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि अखबार जो है अब लोग इन शॉर्ट में खबरों को जानना देखना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब समय नहीं देना चाह रहा, ना ही रिश्तों को ना ना ही अपने जीवन को, ना ही अपने कार्यशैली को। कार्यशैली ही उसको जो है चला रही है, अपने जीवन को चला रही है, और वो फिर जो भी कंज्यूम करता है वही वो सामने निकाल के देता है। तो सिर्फ उसका दिनचर्या जो जब शुरू होता है तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सवाल। तो मीडिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व तो अब और बढ़ गया है। उसका जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है उसका दायित्व तो बढ़ता जा रहा है। मुक्ता जी ने कहा कि कई ऐसे जो है समाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद एक तरफ आप समझ पा रहे हैं कि महिला सशक्त तो हो रही है, लेकिन क्या वह सही कंटेंट दे रहा है कि नहीं। ओटीटी का एक दायित्व तो होता भाई 18+ कंटेंट है। 18+ कंटेंट का मतलब, कहने का मतलब यह है कि उसमें आप भद्दापन भी दिखा सकते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 18+ कंटेंट आप ये तो नहीं जान पा रहे ना कि कौन कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का एक विश्वास और एक दायित्व तो होना चाहिए कि वह जहाँ कहीं भी महिला, तो उसको महिला के नाम से ना रिप्रेजेंट करे, उसको पहले जीवन के नाम से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो पहले जीवन है, महिला बाद में है। मेरा मानना है कि अब पशु पक्षी को भी आप, वो पुरुष है, वो नर है, वो मादा है, पहले जीवन देखिए, पहले श्वसन क्रिया देखिए कि वो चलता फिरता एक जीवन है, तब आप समझ पाएंगे कि वह महिला नहीं, पहले जीवन है। शरीर के आवरण से कौन खूबसूरत है, कौन भद्दा है, इसको जान लेने से शायद आपको क्षणभंगुर आत्म तृप्ति हो सकती है, लेकिन आप खुद में जब एनालाइज करेंगे जीवन के उन आखिरी पलों में, तो वो सारी जो है कृतियां आप तक आएंगी, आपका आएंगे, आपके नजरों के सामने आएंगे। तो महिला कोई उपभोग या संभोग या कोई भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कि मैं शब्दों को लेकर के, हाँ संजीदा हूँ, शब्दों को लेकर संजीदा हूँ, लेकिन हाँ महिला सिर्फ एक दायरे के लिए नहीं, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, फिर कहता हूँ जीवंत है, जीवन है, श्वसन क्रिया उसमें भी है। व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो महिला का सम्मान या पुरुष का सम्मान, फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं कि फेमिनिज्म ही आप एक महिला होकर के, फेमिनिज्म का मतलब है जहाँ बोथ द जेंडर्स आर बीइंग रिप्रेजेंट एज इक्वल,
1: राइट,
0: तो दोनों जेंडर को समान रूप से देखें। अब तीसरे जेंडर की बात आती है तो उसको भी समान रूप से देखिए।
1: जी
0: हाँ, क्योंकि लड़ाई ये उसकी नहीं है, लड़ाई इस मानव सभ्यता और समाज के
1: समाज
0: साथ हम सब की लड़ाई है। जिस दिन ये दायित्व तो हम सब ने उठा लिया तो शायद हमें इस चीज का डर ही नहीं रहेगा कि हमारी घर से बहने, माताएं बहने बाहर जा रही हैं और उनके साथ जो है कोई ऐसा अभद्र व्यवहार होगा। तो ये दायित्व तो हम सब का बनता है।
1: जी धन्यवाद आप सभी का। आज जो हमने बात यहाँ पर की है उसमें एक बात तो निकल कर यही आई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही हैं, सकारात्मक भी हैं, कुछ चीजें नकारात्मक भी हैं, लेकिन अभी भी हमें औरतों की स्थिति को मीडिया में सुधारने की बहुत जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर उत्सव जी हैं, डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया जी हैं, या फिर डॉक्टर सीपी रश्मि हैं, या प्रवीण जैन जी हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि समाज को अभी बहुत सुधरना है, बहुत समझना है, बहुत सीखना है। तो पहल खुद से होती है, सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुधारना है और फिर उसके बाद हम किसी का भी जो चित्रण है वो एक जीवंत आत्मा के तौर पर हम कर पाएंगे, एक जीव के तौर पर कर पाएंगे, हम उसे महिला या पुरुष के तौर पर नहीं करेंगे। तो महिला या पुरुष कोई भी है, वो एक जीव है और उसी के हिसाब से वो क्या डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, यही हमें चित्रण हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो वहाँ पर। सभी अतिथियों का हमारे इस शो में आने के लिए और अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। श्रोताओ, हम फिर से आएंगे लेकर कुछ ऐसे ही विषय जिसमें कि हमारे साथ इसी तरह के एक्सपर्ट होंगे और वो अपनी राय आप तक रखेंगे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए सुनो शारदा 90.8 के साथ। मैं थी आपके साथ किरण, नमस्कार।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम,

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं।

0: सुना शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: परियोजना 4, पृष्ठ संख्या 81, एनिमेशन और खेल गेम्स। ये परियोजना आपको विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा का उपयोग करके स्वयं एनिमेशन और खेलों को बनाने का तरीका सीखने में सहायक होगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे: उपकरणों के साथ संचार कैसे करते हैं जानने में, ऑफलाइन खेल का प्रारूप बनाने में, स्क्रैच का उपयोग करने में, एक ऑनलाइन खेल का डिजाइन बनाने, उसे चलाने और उसमें सुधार करने में, स्वयं के एनिमेशन और खेल बनाने में। चित्र 4.1, कंप्यूटर द्वारा संवाद करना सीखिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ छात्र छात्राएं कंप्यूटर द्वारा संवाद करना सीख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 82। आपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर गेम खेला होगा। चित्र 4.1, जिसमें आंकड़े चलते हैं और जो आपके इनपुट पर प्रतिक्रिया करते हैं। आपने अपने स्मार्टफोन पर एनिमेशन फिल्में और एनिमोजी एनिमेटेड इमोजी भी देखी होंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये गेम एनिमोजी या चलती फिरती आकृतियां, मानव और जानवर और वस्तुओं के वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। जिनके द्वारा ये गेम बनाए जाते हैं वो प्रोग्रामर कहलाते हैं। वे इसे करने के लिए कोडिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ये परियोजना आपको स्वयं के ऑनलाइन खेल और एनिमेशन बनाने में सहायता करेगी। गेम और एनिमेशन डिजाइन करने के लिए रचनात्मकता और तकनीक का समावेश आवश्यक होता है। ये सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। अभिकल्पकार डिजाइनर अपने विचारों को विकसित और परिष्कृत करते हैं। इसके पश्चात वास्तविक कार्य शुरू होता है। ये सब उन कलाकारों द्वारा संभव होता है जो दृश्य विजुअल तत्वों को बनाते हैं और उन प्रोग्रामरों द्वारा जो कोडिंग करते हैं। चित्र 4.2, स्क्रैच इंटरफेस। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें स्क्रैच इंटरफेस समझाया गया है। आप कंप्यूटर पर स्क्रैच का उपयोग करके स्वयं के एनिमेशन और खेल बना सकते हैं। चित्र 4.2, जिस तरह हम संचार करने के लिए विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं, उसी तरह प्रोग्रामर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, उपग्रह और चालक रहित कारों जैसे उपकरणों के साथ संचार करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा का उपयोग करते हैं। चित्र 4.3, डिफॉल्ट स्क्रैच विंडो। यहाँ एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में डिफॉल्ट स्क्रैच विंडो को समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 83। स्क्रैच का उपयोग करना आसान है। इसे विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें आप उन भाषाओं में जटिल प्रोग्राम लिखने के बजाय ब्लॉक में कार्य कर सकते हैं जिन्हें सीखने में समय लगता है। ये ब्लॉक आपको एनिमेटेड आकृतियां बनाने, खेल डिजाइन करने और स्वयं का वॉलपेपर बनाने के लिए प्रोग्राम लिखने की अनुमति देते हैं। चित्र 4.3, कोडिंग हमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन के साथ संवाद करने में सहायता करती है। जब आप किसी बटन पर क्लिक

करते हैं तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन प्रतिक्रिया देता है। आपके द्वारा क्लिक की गई पाठ्य सामग्री मशीन द्वारा समझी जाने वाली भाषा, निर्देशों आदि में अनुवादित हो जाती है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लिए निर्देशों की एक श्रृंखला को प्रोग्राम कहा जाता है। ऐसी कई भाषाएं हैं जिनसे आप कंप्यूटर के साथ संवाद कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन और C++। इन भाषाओं में दृश्य विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिनमें प्रोग्रामिंग निर्देशों की एक श्रृंखला को ब्लॉक में जोड़ा जाता है। ये हमें विभिन्न ब्लॉकों को संयोजित करने और निर्देशों की श्रेणी बनाने की अनुमति देता है। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। एक, ब्लॉक प्रोग्रामिंग के साथ एक स्क्रैच परियोजना बनाने में। दो, स्क्रैच का उपयोग करके खेल और एनिमेशन डिजाइन करने में। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी: इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर या लैपटॉप, स्क्रैच को कंप्यूटर या लैपटॉप पर डाउनलोड करना, नोटबुक, कलम या पेंसिल, कागज, मार्कर, कार्डबोर्ड। पृष्ठ संख्या 84। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? शिक्षक और अपने साथियों के साथ इंटरनेट का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों पर चर्चा कीजिए। ये करें और ये ना करें एक सूची बनाइए। ये करें और ये ना करें की सुनिश्चित कीजिए कि आप कार्य करते समय इस सूची का पालन करेंगे। यदि संदेह हो तो इस बारे में अपने शिक्षक से पूछिए। वीडियो गेम खेलने या इंटरनेट पर कुछ जानकारी खोजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना आनंदपूर्ण है, लेकिन जिस तरह आवश्यकता से अधिक किया गया कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता, उसी तरह अधिक समय स्क्रीन पर बिताना भी सही नहीं होता है। घर से बाहर खेलना और अन्य शारीरिक खेल गतिविधियां आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए लाभदायक होती हैं। इसलिए ये सुनिश्चित कीजिए कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर के अतिरिक्त आपको शारीरिक गतिविधियों का भी पर्याप्त आनंद प्राप्त हो। अतः अपने शिक्षक या परिवार के सदस्यों के निर्देशानुसार अपना स्क्रीन समय सीमित कीजिए। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? आपको कंप्यूटर पर बुनियादी बेसिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे माउस और कीबोर्ड का उपयोग करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जांच करना, ब्राउजर पर खोजना और सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना। मुझे क्या करना चाहिए? गतिविधि एक, खेल डिजाइन। हम सभी कई प्रकार के खेल खेलते हैं। इन खेलों में घर से बाहर खेले जाने वाले खेल आउटडोर गेम, जैसे क्रिकेट, ब्लाइंड मैन्स बफ आदि, और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल इंडोर गेम, जैसे शतरंज, लूडो, कार्ड गेम आदि सम्मिलित हैं। इस पृष्ठ पर प्रश्न आपको खेलों के विषय पर विचार करने में सहायता करने के लिए दिए गए हैं। एक, हम खेल क्यों खेलते हैं? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 85। दो, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? खाली स्थान। तीन, आपको अपने पसंदीदा खेल में क्या पसंद है? खाली स्थान। चार, आपके पसंदीदा खेल में कितने सदस्य खेल सकते हैं? खाली स्थान। पांच, आपके पसंदीदा खेल में किन नियमों का पालन करना होगा? खाली स्थान। छह, क्या आपके पसंदीदा खेल के विषय में कुछ और रोचक है? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 86। गतिविधि दो, अपने पसंदीदा खेल का एक प्रारूप शिल्प सामग्री का उपयोग करके बनाइए। उदाहरण के लिए, यदि आपको लूडो या सांप सीढ़ी पसंद है
तो कार्डबोर्ड और बटनों का उपयोग करके बोर्ड बनाइए। यदि आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पिच का प्रारूप बनाइए। यदि आपको ब्लाइंड मैन्स बफ पसंद है तो उस मैदान या खेल के मैदान का प्रारूप बनाइए जहां आप ब्लाइंड मैन्स बफ खेलेंगे। इसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। चित्र 4.4। चित्र 4.4 खेल का प्रारूप बनाना खेल के विवरण पर विचार करने में आपकी सहायता करता है। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें कुछ बच्चे खेल का प्रारूप बना रहे हैं। इस पृष्ठ पर खाली स्थान दिया गया है। इसमें आप खेल के प्रारूप का एक रेखा चित्र बना सकते हैं या एक तस्वीर चिपका सकते हैं। पृष्ठ संख्या 87। गतिविधि तीन। ऑनलाइन खेल खेलें। आपने ऑफलाइन या वास्तविक दुनिया आउटडोर एवं इंडोर गेम्स में खेले जाने वाले खेलों से संबंधित कुछ गतिविधियां की हैं। अब कुछ ऑनलाइन खेलों को खेलने की बारी है। स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप पर कुछ गेम्स खेल खेलिए। कोशिश कीजिए कि ये खेल विभिन्न प्रकार के हों। ऑनलाइन खेलों की कोशिश के आधार पर इस पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, क्या सभी खेलों में नियम होते हैं? हाँ, नहीं। दो, क्या उन सभी में कार्टून, मिकी माउस आदि जैसे पात्र थे? हाँ, नहीं। तीन, क्या सभी खेलों में पात्रों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की? हाँ, नहीं। चार, क्या सभी खेलों में रंगीन पृष्ठभूमि कलर बैकग्राउंड थी? हाँ, नहीं। पांच, क्या खेलों में पृष्ठभूमि संगीत बैकग्राउंड म्यूजिक था? हाँ, नहीं। छह, क्या आपको खेल रोचक और चुनौतीपूर्ण लगा? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो इसे और अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, नहीं। खाली स्थान। गतिविधि चार, एनिमेशन के साथ स्वयं का खेल तैयार करना। आपने अपने पसंदीदा खेलों के विषय में पूरी तरह विचार किया है। ये खेल ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों प्रकार के हैं। आपने इन खेलों के नियम, खिलाड़ी, खिलाड़ियों के बीच की बातचीत और दोनों प्रकार के खेलों में विद्यमान चुनौतियों को समझा है। ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के खेलों में संगीत की एक पृष्ठभूमि होती है जो उन्हें आकर्षक और रोचक बनाती है। अब स्क्रैच का उपयोग करके बनाए गए कुछ रोचक ऑनलाइन गेम और एनिमेशन का अध्ययन कीजिए। पृष्ठ संख्या 88, चित्र 4.5। चित्र में एक गेम समझाया गया है जो मृदा परतों की सही पहचान और मिलान करने के लिए है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें मृदा परतों की सही पहचान और मिलान करना समझाया गया है। मृदा परतें, जैविक परत की शीर्ष मृदा, उपमृदा, मूल सामग्री, मृदा के नीचे की चट्टान। खेल और एनिमेशन ढूंढने के लिए आप निम्नलिखित संकेतों, खोज के लिए शब्द कीवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक, स्क्रैच का उपयोग करके एनिमेशन खेल। दो, विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक स्क्रैच खेल। तीन, गणित कौशल का अभ्यास करने के लिए स्क्रैच खेल। चार, संगीत और ध्वनि प्रभाव के साथ रचनात्मक स्क्रैच खेल। पांच, इतिहास या भूगोल पढ़ाने के लिए स्क्रैच खेल। छह, स्क्रैच में बने साहसिक खेल। स्क्रैच पर खाता बनाना। एक, खाता अकाउंट बनाने के लिए आपको स्क्रैच वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। दो, अपने स्क्रैच अकाउंट को एक ईमेल आईडी का उपयोग करके खोलिए। आप अपने शिक्षक या परिवार के सदस्य से अनुमति लेकर उनके ईमेल आईडी का भी उपयोग कर सकते हैं। तीन,
अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिए। आप स्क्रैच का उपयोग करके एनिमेशन और खेल बनाने के लिए ट्यूटोरियल खोज सकते हैं। निम्नलिखित खोज शब्द टाइप कीजिए। नौसिखियों के लिए स्क्रैच खेल ट्यूटोरियल, स्क्रैच पर भूल भुलैया खेल कैसे बनाएं, स्क्रैच पर परस्पर संवादात्मक इंटरैक्टिव कहानी सुनाना, स्क्रैच पर बहु खिलाड़ी खेल बनाना। पृष्ठ संख्या 89। एक, क्या आपको स्क्रैच पर अपना अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो इसका समाधान कैसे किया गया? खाली स्थान। अब आप स्क्रैच का उपयोग शुरू कर सकते हैं। गतिविधि 5। पात्र, वस्तुएं और खेल का बैकड्रॉप बनाइए। स्क्रैच के साथ अन्य प्रयोग भी कीजिए। चित्र 4.6 से 4.10 पर दिखाई देने वाली कुछ छवियां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चित्र 4.6, स्क्रैच पर पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और स्प्राइट। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं जिनमें स्क्रैच पर पृष्ठभूमि और स्प्राइट समझाई गई हैं। स्क्रैच का उपयोग शुरू करने के साथ साथ नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी देते रहिए। दिए गए प्रश्न आपको उन कार्यों के विषय में सोचने में सहायता करेंगे जो आप कर सकते हैं। पुनः जब आप स्क्रैच का उपयोग करके कुछ बनाने की योजना बना रहे हों तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। एक, क्या आप स्प्राइट का चयन और इंपोर्ट करने में सक्षम थे? हाँ, नहीं। दो, क्या आप इनबिल्ट स्प्राइट का उपयोग करने में सक्षम थे या आपने इंटरनेट से कुछ छवि या आपके द्वारा लिए गए चित्र का उपयोग किया था या आपने दोनों का उपयोग किया? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 90। चित्र 4.7, अपने खेल में सम्मिलित किए जाने वाले स्प्राइट का चयन करना। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में अपने खेल में सम्मिलित किए जाने वाले स्प्राइट का चयन करना समझाया गया है। 3, क्या आपने ड्राइंग द्वारा स्वयं का स्प्राइट बनाने का प्रयास किया? हाँ, नहीं। 4, क्या आप चयनित स्प्राइट की पोशाक बदलने में सक्षम थे? हाँ, नहीं। 5, क्या आप वस्तुओं की पहचान करने और इंपोर्ट करने में सक्षम थे? हाँ, नहीं। 6, क्या आप चुने गए स्प्राइट के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि की पहचान करने और उसका उपयोग करने में सक्षम थे? हाँ, नहीं। चित्र 4.8, कंप्यूटर में स्प्राइट को अपलोड करना। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। इनमें कंप्यूटर में स्प्राइट को अपलोड करना सिखाया गया है। AI का उपयोग करके स्वयं की छवियां बनाना। आप AI इमेज जनरेटर का उपयोग करके स्वयं की छवियां बना सकते हैं। इस उपकरण को लिखित संकेत, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कहा जाता है, जो खोज शब्द के आधार पर कार्य करता है। दिए गए लिखित संकेत को ये संसाधित करता है और उसके अनुकूल छवि तैयार करता है। आप इस परियोजना के लिए AI छवि तैयार करने के लिए इस पृष्ठ पर लिखित कार्य कर सकते हैं। 1, AI इमेज जनरेटर चुनिए। आप अपने शिक्षक और अन्य लोगों से सहायता मांग सकते हैं। पृष्ठ संख्या 91। 2, अपने विचार दर्ज कीजिए। आप जो चाहते हैं उसे सरल शब्दों में बताइए। उदाहरण के लिए, यदि आप उड़ने वाली बिल्ली के बारे में सोच रहे हैं तो कहें, आसमान में उड़ती हुई बिल्ली। 3, विकल्प खोजिए। विभिन्न शैलियों का उपयोग करके देखिए कि उपकरण टूल छवियों को किस तरह पुनः प्रस्तुत करता है। 4, परिष्कृत और प्रयोग कीजिए। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो उनका वर्णन कीजिए। उदाहरण के लिए, बिल्ली को छोटा करें या पृष्ठभूमि को जंगल में बदलें। 5, डाउनलोड या सहेजें, सेव कीजिए।
छवि को अपने यंत्र स्क्रीन पर डाउनलोड कीजिए। 6. अब आप इसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। गतिविधि 6. अपने पात्रों और वस्तुओं की प्रोग्रामिंग करना। अब आपको अपने स्प्राइट को एनिमेट चलायमान करने की आवश्यकता है। चित्र 4.9 अपना स्प्राइट चुनिए और कोड ब्लॉक को अपनी विंडो पर लाइए ताकि वो आपके निर्देशों का पालन करें। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें स्प्राइट चुनकर ब्लॉक को विंडो पर लाना सिखाया गया है। इस पृष्ठ पर लिखित प्रश्न आपको ये सोचने में सहायता करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। साथ ही ये प्रश्न दस्तावेज बनाने में सहायक होंगे जिसे आप भविष्य में देख सकते हैं। 1. क्या आप अपने स्प्राइट को एनिमेट करने के लिए गतिमान मोशन और रूप लुक्स ब्लॉक के संयोजन का उपयोग करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। पृष्ठ संख्या 92। 2. क्या आप नियंत्रण कंट्रोल और घटना इवेंट ब्लॉक का उपयोग करके स्प्राइट एनिमेट करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। 3. क्या आप अपने एनिमेटेड ब्लॉक में संगीत म्यूजिक सम्मिलित करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। 4. क्या आप विविध स्प्राइट का चयन करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। 5. क्या आप उनकी पोशाक बदलने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। गतिविधि 7. अपने मित्र के लिए एक एनिमेटेड बर्थडे कार्ड बनाइए। अब अपने मित्र के नाम या छवि का उपयोग करके उसके लिए चलचित्र जन्मदिन एनिमेटेड बर्थडे कार्ड बनाइए। चित्र 4.10। आप स्क्रेच पर भी चलचित्रण एनिमेशन कर सकते हैं। इस विंडो में अक्षर एनिमेटेड हैं। कोमल KOMAL। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें स्क्रेच पर चलचित्रण करना सिखाया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप जो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखने में सहायता करेंगे। 1. क्या आप अपने मित्र के चित्र को स्प्राइट के रूप में भेजने और उपयोग करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। 2. क्या आप अपने मित्र के स्प्राइट का उपयोग करके एक एनिमेटेड जन्मदिन संदेश बनाने के लिए चलायमान मोशन रूप लुक्स नियंत्रण कंट्रोल और घटना इवेंट ब्लॉक के संयोजन का उपयोग करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। 3. क्या आप अपने मित्र के पसंदीदा गीत को एनिमेटेड कार्ड के लिए पृष्ठभूमि संगीत के रूप में उपयोग करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। पृष्ठ संख्या 93। 4. क्या आप कार्ड को सहेजने सेव और अपने मित्र के साथ साझा करने में सक्षम रहे? हाँ नहीं। 5. क्या आपको इस एनिमेटेड बर्थडे कार्ड की रचना डिजाइन करने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ नहीं। यदि हाँ तो आपने उसका समाधान कैसे किया? खाली स्थान। 6. क्या आपने स्क्रैच का उपयोग करके कुछ और बनाने का प्रयास किया? हाँ नहीं। खाली स्थान। गतिविधि 8. खेल गेम का डिजाइन तैयार करना। अब आप अपने खेल गेम को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपको अपने खेल के विवरण की योजना बनानी होगी। इसे स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। चित्र 4.11। स्टोरी बोर्ड ये योजना बनाने में सहायता करता है कि खेल या एनिमेशन के निर्माण के दौरान स्क्रीन पर क्या दिखाया जाएगा। ये एक रोड मैप की तरह होता है। आप इसे कागज पर बना सकते हैं या अपनी योजना के विवरण के साथ दस्तावेज बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग भी कर सकते हैं।
आप अपने पात्रों के चित्र बना सकते हैं। साथ ही आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वे आदेशों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्रिया

0: भावनाओं का क्रम दिखा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि आपके मन में जो भी विचार हैं वो स्टोरी बोर्ड में सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार स्टोरी बोर्ड सुनिश्चित करता है कि खेल या एनिमेशन बनाते समय आपको बार बार रुककर सोचने की आवश्यकता न पड़े। पृष्ठ संख्या 94। कहानी का नाम, सोनू ने मेरा गृह कार्य बिगाड़ दिया। दृश्य क्रमांक, दृश्य संख्या 1। पृष्ठभूमि, घर, पात्र, पात्र 1, सोनू, एक छोटा सफेद कुत्ता। कहानी का नाम, सोनू ने मेरा गृह कार्य बिगाड़ दिया। दृश्य क्रमांक, दृश्य संख्या 1। पृष्ठभूमि, घर, पात्र, पात्र 1, सोनू, एक छोटा सफेद कुत्ता। पात्र 2, राकेश, कक्षा 4 का छात्र। ध्वनि और संगीत, ध्वनि प्रभाव यू, सोनू के भौंकने की आवाज। एक्शंस और एनिमेशन, राकेश अपने हाथ हिलाता है, सोनू राकेश की ओर बढ़ता है। दृश्य विवरण, कथा, राकेश ने सोनू को बुलाया। संवाद, राकेश, यहां आओ सोनू। सोनू, यू। एक्शंस और एनिमेशन, सोनू बाई ओर से मेज पर कूदता है, दूध का गिलास मेज पर गिरता है, दूध मेज पर रखी नोटबुक पर गिर जाता है। ध्वनि, राकेश चिल्लाता है। चित्र 4.11। एनिमेशन के लिए स्टोरी बोर्ड का एक उदाहरण, यहां कुछ चित्र दिए गए हैं। इनमें एनिमेशन के लिए स्टोरी बोर्ड का एक उदाहरण समझाया गया है। यहां एक चित्र में एक बच्चे की गोद में उसका कुत्ता है। ध्यान दीजिए, विशेष निर्देश, ध्यान दीजिए कि राकेश पढ़ाई करने के लिए बैठा है और उसकी मेज पर दूध का एक गिलास रखा हुआ है। अंत में दिखाइए कि सोनू राकेश की ओर कूदता है, जिससे गिलास गिर जाता है और दूध मेज पर गिर जाता है। पृष्ठ संख्या 95। अपने साथियों के सामने खेल का विचार प्रस्तुत कीजिए। क्या आपको कोई सुझाव हाँ या नहीं में मिला? यदि हाँ तो आपने उनका उपयोग कैसे किया? खाली स्थान, गतिविधि 9, खेल बनाने के लिए कोडिंग करना। अपने शिक्षकों या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से तैयार किए गए खेल के लिए कोड चित्र 4.12 लिखिए। बिंदु 1, पात्रों और दृश्यों का निर्माण। बिंदु 2, पात्रों को चलायमान एनिमेटिंग कैरेक्टर करना। बिंदु 3, संवाद और पाठ्य सामग्री टेक्स्ट का उपयोग करना। बिंदु 4, कहानी में विभिन्न घटनाओं को सक्रिय ट्रिगर करने के लिए घटनाखंड इवेंट ब्लॉक का उपयोग करना। बिंदु 5, पृष्ठभूमि संगीत जोड़ने के लिए ध्वनि ब्लॉकों का उपयोग करना। चित्र 4.12। इस कोड में जब आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो बिल्ली 10 कदम आगे बढ़ेगी और हेलो कहेगी। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें स्टार्ट बटन दबाने के बाद बिल्ली के आगे बढ़ने और हेलो कहने को समझाया गया है। 1, गतिविधि 5 में डिजाइन किए गए खेल के लिए एक आलेख स्क्रिप्ट लिखिए जिसमें इनबिल्ट ब्लॉक्स का उपयोग जैसे गति, मोशन, रूप, लुक्स, ध्वनि, साउंड, घटना, इवेंट्स, नियंत्रण, कंट्रोल, संवेदन, सेंसिंग, संचालक, ऑपरेटर्स, चर, वेरिएबल्स और नियंत्रण संरचनाएं जिसमें लूप और सशर्त कथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स सम्मिलित हों। खाली स्थान, पृष्ठ संख्या 96। 2, अपने खेल के नाम के साथ एक प्रतीक चिन्ह लोगो तैयार कीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर उसका फोटो चिपकाइए। यहां खाली स्थान दिया गया है जिसमें लोगो तैयार करके चिपकाया जा सकता है। 3. क्या आप निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहे? एक मंच स्टेज तैयार करना। बिंदु 1, छवि भेजकर खेल के मंच स्टेज के लिए पृष्ठभूमि चुनना या बनाना, हाँ नहीं। बिंदु 2, स्प्राइट को तैयार करना या भेजना इंपोर्ट, हाँ नहीं। बिंदु 3, वस्तु को तैयार करना या भेजना इंपोर्ट, हाँ नहीं। ख, अपने स्प्राइट को कोड करना। बिंदु 4, अपने स्प्राइट की गतिविधियों का संचालन करने के लिए मोशन और लुक्स ब्लॉक के संयोजन का उपयोग करना, हाँ नहीं। बिंदु 5, गति, अतः क्रिया, ऑप्शन अंतः क्रिया, एनिमेशन और गेम तर्क लॉजिक को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कोड ब्लॉकों का प्रयोग करना, हाँ नहीं। ग, खेल की नियमावली को क्रियान्वित करना। बिंदु 6, नियंत्रित ब्लॉक का उपयोग करके खेल के नियमों को परिभाषित करना, हाँ नहीं। बिंदु 7, खेल में अंतर प्रभावी तत्वों को इंटरैक्टिव गेम प्ले एलिमेंट्स बनाने के लिए सशर्त यदि अन्यथा कथन लूप वेरिएबल और सेंसिंग ब्लॉक का उपयोग करना, हाँ नहीं। पृष्ठ संख्या 97। बिंदु 8, विशिष्ट घटनाओं की प्रतिक्रिया में कार्रवाई आरंभ करने के लिए घटना इवेंट ब्लॉक का उपयोग करना, हाँ नहीं। बिंदु 9, ध्वनि प्रभावों साउंड इफेक्ट्स और पृष्ठभूमि संगीत बैकग्राउंड म्यूजिक का उपयोग कर अपने खेल के अनुभव को रोमांचक बनाना, हाँ नहीं। 4, खेल तैयार करने में क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यदि हाँ तो आपने उनका समाधान कैसे किया? हाँ नहीं। खाली स्थान। गतिविधि 10, खेल गेम की जांच करना। देखिए कि आपका खेल गेम चल रहा है या नहीं। 1, स्क्रैच में साझा कीजिए शेयर बटन पर क्लिक करके अपना खेल प्रकाशित कीजिए। 2, समूह के अन्य सदस्यों से खेल खेलने का अनुरोध कीजिए। 3, क्या कोई समस्या या त्रुटि बग है जिसे सुचारू रूप से काम करने के लिए सुधारने की आवश्यकता है? हाँ नहीं। गतिविधि 11, अपना खेल दूसरों के साथ साझा करना। अब कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसे व्यक्ति को खेल के बारे में बताना है जिसके साथ आपने पहले कभी काम नहीं किया है। आपको उन्हें खेल से परिचित कराना होगा और उन्हें बुनियादी निर्देश देने होंगे। आप दृश्य या श्रव्य, ऑडियो या वीडियो सामग्री बनाकर या दस्तावेज बनाकर ऐसा कर सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आपको इन निर्देशों को विकसित करने में सहायता करेंगे। 1, आपके खेल का नाम क्या है? खाली स्थान। 2, खेल के विभिन्न घटक क्या हैं? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 98। 3, खेल के नियम या खेलने के निर्देश क्या हैं? खाली स्थान। मैंने दूसरों से क्या सीखा? आपने स्क्रैच पर वीडियो देखे और दूसरों के साथ खेल बनाने के तरीके पर चर्चा की। 1, क्या आपने मार्गदर्शिका देखी या ये देखा कि दूसरों ने अपनी परियोजनाओं को कैसे कोड किया? खाली स्थान। 2, क्या आपने सहपाठियों के साथ किसी परियोजना पर काम किया? आपने उस दौरान उनसे क्या सीखा? खाली स्थान। 3, क्या आपने अपने शिक्षक या साथियों से सहायता या सलाह मांगी? आपको सबसे उपयोगी सलाह क्या मिली? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 99। 4, साथियों की सहायता से आपने कौन सी नई तकनीकें या ब्लॉक खोजी? खाली स्थान। 5, क्या दूसरों से सीखने से आपकी परियोजनाओं में कोई नया विचार या विशेषता उत्पन्न हुई? खाली स्थान। 6. क्या आपको स्क्रैच के साथ दूसरों को सिखाने या उनकी सहायता करने का अवसर मिला है? आपने उन्हें क्या सिखाया और इससे आपको अपनी समझ को मजबूत करने में कैसे सहायता प्राप्त हुई? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 100। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा? यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया, इसका अनुमान लगाइए। इसे नीचे दी गई समय रेखा पर अंकित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में दी गई गतिविधियों के अतिरिक्त गतिविधियां की हैं, तो संख्या और समय जोड़िए। यहां एक समय रेखा अंकित की गई है जिसमें गतिविधि और समयावधि कालांश समझाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं और क्या कर सकती हूं? 1. आप अपने आसपास के लोगों और वस्तुओं की तस्वीरों का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक गेम, एनिमेटेड कहानी बना सकते हैं। ध्यान रखें, तस्वीरें लेने से पहले अनुमति जरूर लें। अपने परिवार के सदस्यों और समुदाय के बुजुर्गों के साथ अपनी पसंदीदा लोक कहानी पर चर्चा कीजिए। पात्रों, कथानकों, महत्व के दृश्यों आदि का विवरण देते हुए एक स्टोरी बोर्ड तैयार कीजिए। इस कहानी को स्क्रैच में अनुवाद करने के लिए, जिसमें पात्र और दृश्य बनाना, पात्रों को एनिमेट करना, संवाद और पाठ्य सामग्री का उपयोग करना, विभिन्न घटनाओं को सक्रिय करने के लिए इवेंट ब्लॉक्स का उपयोग करना और पृष्ठभूमि संगीत जोड़ने के लिए ध्वनि ब्लॉक्स का उपयोग करना सम्मिलित है। 2. आप अलग अलग गेम बनाने के लिए स्क्रैच एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने स्वयं की आकृतियां और चित्र बनाने के लिए पेन एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 4.13। स्क्रैच एक्सटेंशन और पेन एक्सटेंशन का उपयोग। यहां दो चित्र दिए गए हैं जिनमें स्क्रैच एक्सटेंशन और पेन एक्सटेंशन का उपयोग समझाया गया है। पृष्ठ संख्या 101। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको क्या करने में आनंद आया? 2. आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 3. अगली बार आप क्या अलग करेंगे? 4. ऑनलाइन और ऑफलाइन खेलों की तुलना कीजिए। प्रत्येक खेल के विषय में अपनी पसंद की 3 बातें बताइए। 5. परियोजना से संबंधित कौन सी नौकरियां हैं? अपने आसपास देखिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा अभी अभी की गई गतिविधियों से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण हैं: प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, गेम डेवलपर, 3D एनिमेटर आदि। पृष्ठ संख्या 102। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए। स्वस्थ और सक्रिय रहिए। पौष्टिक भोजन खाइए। अच्छी नींद लीजिए। उन कार्यों को कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। काम के दौरान अल्प विराम, ब्रेक लीजिए। मित्रों के संपर्क में रहिए। सहानुभूति का भाव रखिए। यहां कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना समझाया गया है। इसके साथ ही परियोजना 4 समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर मुइनुल हुसैन। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी। सोचा प्यास लगी होगी, मैं भाग के दादी के पास गया। बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया। बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी मॉनसून। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि समुद्र असंख्य जीवों और वनस्पतियों का घर है। जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी मॉनसून।

0: वसुधा कहाँ हो तुम?
1: रसोई में हूँ।
0: अरे सुना तुमने, मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अपने निश्चित समय से 2 सप्ताह पूर्व ही पहुँच गया है, यानी पकौड़े खाने का मौसम आ गया।
1: हाँ समझ गए, आप और आपके पकौड़े। बनाती हूँ पकौड़े।
0: गुड।
2: पापा ये मॉनसून क्या होता है?
3: लो पापा, इसे इतना भी नहीं पता। मॉनसून कहते हैं बारिश को, है ना पापा?
0: नहीं सृष्टि, बारिश को मॉनसून नहीं कहते, ये तो
2: बड़ी अक्लमंद की नानी बनती है ना, हर बात में बोलेगी जरूर।
3: रहने दे। पर पापा जब मॉनसून आता है तभी तो बारिश होती है।
0: नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है। हाँ ये सच है कि बारिश सामान्यतया मॉनसून के आने पर ही होती है, पर हर मॉनसून के साथ बारिश हो ये जरूरी नहीं। जैसे हमारे देश में गर्मी के मॉनसून में तो बारिश होती है, पर जाड़े के मॉनसून में ज्यादातर देश के भागों में नहीं होती। हालांकि ज्यादातर लोग तुम्हारी तरह ही बारिश और मॉनसून को एक ही समझते हैं।
3: अब तब पापा ये मॉनसून होता क्या है?
0: अब देखो सृष्टि, इसके बारे में मुझे बहुत विस्तार से तो पता नहीं है, पर ये एक प्रकार की हवाएं होती हैं जो एक मौसम में महीनों एक खास दिशा में ही बहती रहती हैं।
2: हवाएं?
0: अरे सृष्टि बेटा देखो तो तेरा बाहर कौन है।
3: हाँ मैं देखती हूँ। अरे पवन अंकल आप, नमस्ते।
4: नमस्ते सृष्टि।
0: अरे पवन आओ।
2: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते बेटा।
0: अरे आओ बैठो। आज यार कैसे भूल पड़े भाई?
4: भाई सूर्य प्रकाश, मैं इधर से गुजर रहा था तभी याद आया कि बरसों से वसुधा भाभी के हाथ की चाय नहीं पी।
0: भाई वसुधा कहाँ हो तुम?
1: बोला तो रसोई में हूँ, पकौड़े बना रही हूँ, साथ में चाय नहीं पियेंगे क्या?
4: देखो सूर्य प्रकाश, वो कहते हैं ना कि दाने दाने मेरा मतलब हर कप पर लिखा है पीने वाले का नाम।
0: अरे भाई वसुधा, ये पवन आया है तो चाय पी कर ही जाएगा, मानेगा नहीं भाई।
4: हाँ तो अब बताओ क्या हो रहा था मानव?
2: अंकल हम लोग मॉनसून के बारे में बात कर रहे थे।
4: क्या क्या क्या मॉनसून? जरा फिर से बोलो।
3: ये बुद्धू नहीं बता पाएगा अंकल, मैं बताती हूँ। पवन अंकल, पापा बता रहे थे कि अब की बार मॉनसून समय से कुछ पहले ही आ गया है। हम तो समझते थे कि मॉनसून का मतलब होता है बारिश, पर पापा कहते हैं कि ये तो एक तरह की हवाएं होती हैं।
4: सृष्टि वैसे तुम्हारे पापा कह तो ठीक ही रहे।
2: तो अंकल इसका मतलब हम अब तक मॉनसून का गलत ही अर्थ लगाते रहते थे?
4: हाँ मानो तुम्हें क्या, अरे बहुत सारे लोग यही समझते हैं। दरअसल मॉनसून शब्द एक अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसमी हवाएं। अरब सागर में यात्रा करने वाले नाविकों ने इस शब्द का चलन शुरू किया था।
0: हमारे ऋग्वेद

0: एक मिले जुले नाम इरिथ्रियन सागर के नाम से।
1: पर पवन, अपने कवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में जो मानसून बादलों का वर्णन किया है, वो कितना सटीक है ना।
0: हाँ सूर्य प्रकाश, उन्होंने लिखा है कि उज्जैन में मानसून की पहली वर्षा आषाढ़ की प्रथमा को होती है, जो आमतौर पर 15 जून के आसपास पड़ती है। अरे भाई, इस बात की सच्चाई को तो हम जैसे आज के मौसम विज्ञानी भी मानते हैं।
2: इसका मतलब मानसून एक प्रकार की हवाओं को कहते हैं, है ना पवन अंकल?
0: हाँ, अब तुम ठीक समझे सृष्टि। वास्तव में ये एक प्रकार की तेज हवाएं ही होती हैं, जिनकी दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है।
2: मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, वो कैसे अंकल?
3: फिलहाल तो पवन अपनी बातों की दिशा को बदलो और इस चाय और इन पकौड़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित करो।
0: वाह वाह, भाभी पकौड़ियाँ लाओ लाओ लाओ लाओ।
4: हाँ विवेक, विवेक तुम भी लो ना, बहुत देर से बैठे हो।
3: चटनी ले लो, चटनी ले लो।
0: शाबाश,
3: मैं कढ़ाई गैस पर चिड़ी छोड़ आई हूँ, पकौड़ियाँ अगर और चाहिए तो मांग लेना।
0: अरे मांग क्या लूंगा भाभी, दे ही जाना।
4: अरे इनको तो खत्म कर पेटो कहीं के।
0: भाई कुछ भी कह लो सूर्य प्रकाश, पर वसुधा भाभी की पकौड़ियाँ वाह वाह वाह। हाँ तो भाई, कहाँ थे हम लोग?
4: पकौड़ियों में।
0: अच्छा, पकौड़ियों में।
2: आप कह रहे थे कि मॉनसून एक प्रकार की तेज हवाएं होती हैं, जिनकी दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है।
0: हाँ सृष्टि, गर्मियों का मॉनसून, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून भी कहते हैं, हमारे देश में जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। इसी मॉनसून में हमारे देश में बारिश होती है।
2: अंकल, तो क्या सर्दियों का भी मॉनसून होता है?
0: हाँ मानो होता है, पर सर्दियों के मॉनसून को उत्तरी पूर्वी मॉनसून कहते हैं। ये दिसंबर से मार्च की शुरुआत तक सक्रिय रहता है। इस दौरान उत्तर भारत के अधिकांश भागों में आकाश साफ रहता है, बारिश नहीं होती और मौसम सूखा रहता है।
2: पर अंकल, एक मॉनसून में बारिश और दूसरे में बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो जाता है?
0: देखो मानव, ये बात मैं तुम्हें यहाँ बता तो सकता हूँ, पर यहाँ बिना नक्शे के तुम इसे ढंग से समझ नहीं पाओगे।
2: तो पवन अंकल,
0: तब सृष्टि, तुम कल, मानव और विवेक, हाँ तुम सब कल या फिर परसों मेरे विभाग में आ जाओ।
2: पर कल तो हमारी कोई छुट्टी है ही नहीं।
0: नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल के बाद ही आ जाओ।
2: हाँ ये ठीक रहेगा।
0: हाँ तो भाई, कल की बात पक्की रही?
5: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वसुधा भाभी और पकौड़ियाँ भिजवाना जरा।

0: नमस्ते अंकल,
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ मानव, हाँ तो भाई, हम उस दिन किस बारे में बात कर रहे थे?
2: यही अंकल कि मॉनसून में बारिश कैसे होती है।
1: हाँ याद आया, तो उस दिन मैं बता रहा था मॉनसून के बारे में।
3: हाँ अंकल,
1: तो मानव, हर मॉनसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं।
2: वो कौन सी अंकल?
1: एक तो समुद्र के पानी के मुकाबले पृथ्वी सूरज की गर्मी को तेजी से सोखती है और जल्दी गर्म हो जाती है। मॉनसून बनने में दूसरी जरूरी क्रिया है धरती का अपनी धुरी पर घूमना।
2: ठीक है अंकल, और
1: पानी की गुप्त ऊष्मा यानी कि पानी से भाप बनने में पानी वातावरण से ऊष्मा लेता है और भाप से पानी बनते समय उतनी ही ऊष्मा छोड़ता है। समझी सृष्टि?
2: कुछ कुछ अंकल।
1: अच्छा तो बताओ, क्या समझी तुम?
2: यही कि मॉनसून बनने की तीन मुख्य वजह होती है।
1: हाँ?
2: एक, जमीन का समुद्री पानी के मुकाबले जल्दी और ज्यादा गर्म होना। दूसरा, धरती का अपनी धुरी पर घूमना।
1: ठीक।
2: तीसरा, पानी से भाप बनते समय वातावरण से ऊष्मा लेना और भाप से पानी बनते समय वातावरण में ऊष्मा छोड़ना।
1: हाँ सृष्टि, इसके अलावा जमीन पर बहते समय घर्षण के कारण हवा की गति का कम हो जाना, हवा के रास्ते में पड़ने वाली रुकावटें जैसे पर्वत आदि मिलकर तेज हवाओं और बारिश की वजह बनती हैं।
3: पर अंकल, ऐसा क्यों होता है? धरती समुद्री पानी के मुकाबले क्यों ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है?
1: काफी अक्लमंदी का सवाल पूछा है तुमने मानव।
3: अंकल, मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, क्यों दीदी?
1: अच्छा सुनो, समुद्री पानी में एक तो सूरज की किरणें और गर्मी काफी गहरे तक चली जाती है, करीब 50 मीटर की गहराई तक।
2: 50 मीटर?

0: की गहराई तक।
1: हाँ, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। दूसरे, सागर के पानी की ऊपरी सतह गर्म होती है तो लहरें उसे नीचे के ठंडे पानी में मिलाकर और ठंडा कर देती हैं।
2: पर सृष्टि, जमीन पर तो ये गर्मी ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक ही जा पाती है। यहाँ पानी की तरह ठंडे और गर्म के मिलने का खतरा भी नहीं, इसलिए जमीन पानी के मुकाबले ज्यादा और तेजी से गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक।
0: इसका मतलब क्या हुआ पवन अंकल?
1: इससे गर्मियों में धरती की सतह के पास की हवा गर्म हो जाती है और ये हवा गर्म होने से हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तुम ऐसे नहीं समझोगी। अच्छा देखो, हाँ इस नक्शे को देखो।
0: हाँ।
1: इसमें ये ऊपर की तरफ इशारा करते लाल तीर,
0: ये वाले ना अंकल?
1: हाँ ये वाले, ये बताते हैं कि यहाँ से गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है।
0: गर्म हवा बताने के लिए ही तीरों का रंग लाल रखा गया है ना अंकल?
1: हाँ, जैसे ही गर्म हवा के ऊपर उठने से यहाँ हवा का दबाव कम होता है, समुद्रों से ये जगह भरने के लिए समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा बहने लगती है।
0: पर समुद्र के ऊपर की हवा तो इतनी गर्म नहीं होगी।
3: मतलब समुद्र की सतह से ठंडी और नम हवा तेजी से चलकर जमीन की तरफ आती जाती है और वहाँ से आगे बढ़ती जाती है।
1: ठीक समझे तुम मानव। हवाओं का ये बहाव काफी तेज होता है, इन्हीं हवाओं को हम मॉनसून कहते हैं।
3: अच्छा, ये तेज हवा ही मॉनसून कहलाती है।
0: पवन अंकल, पर इन हवाओं, मेरा मतलब है मॉनसून से बारिश कैसे हो जाती है?
1: देखो, समुद्र की ओर से जो हवाएं जमीन की ओर बहती है ना, उनमें जलवाष्प या नमी बहुत होती है।
3: तो
1: जब यही हवाएं गर्म जमीन पर आती हैं, तो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। इस तरह ये हवाएं आगे बहते बहते ऊपर उठती जाती हैं और इनमें मौजूद यानी कि पानी की भाप।
2: हाँ मानव, पानी की भाप। जानते हो ना कि मॉनसून के समय में हमारे देश में पश्चिमी तट से घुसने वाली हवाएं अपने साथ करीब 7,500 करोड़ टन जलवाष्प समुद्र से अपने साथ उड़ा कर लाती हैं।
0: 7,500 करोड़ टन जलवाष्प?
1: हाँ सृष्टि, पर इसकी तिहाई यानी कि करीब 2.5 करोड़ टन जलवाष्प ही बारिश में बदल पाती है, जिससे पूरे देश में करीब 1.25 इंच बारिश हो सकती है।
3: सिर्फ एक दिन में इतना पानी उड़ाकर लाती है हवाएं अंकल?
1: हाँ भाई, जैसे जैसे ये जलवाष्प पानी में बदलती हैं, बादल बनने लगते हैं।
0: पर इनसे बारिश कैसे हो जाती है पवन अंकल?
1: भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है सृष्टि।
3: अलग अलग कैसे अंकल?
1: कुछ लोग ये मानते हैं कि जब ये बादल रास्ते में रुकावट जैसे कि पहाड़ आने पर और ऊपर उठते हैं, जहां तापमान और कम हो जाता है, जिससे इनमें मौजूद पानी की भाप छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है
3: और बारिश हो जाती है।
1: नहीं मानव, ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि ये हवा के साथ ही तैरती रहती हैं। अगर ये आपस में एक दूसरे से टकराएं भी तो भी ये टकराकर अलग अलग हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ती नहीं।
0: कमाल है।
1: हाँ सृष्टि, ये इसलिए होता है क्योंकि इनका आकार काफी छोटा होता है। 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा।
0: 1 मिलीमीटर का भी 50वां हिस्सा? ये तो काफी छोटा हो गया अंकल।
1: भाई इसीलिए तो ये नीचे नहीं गिर पाती।
3: लेकिन अंकल, तब बारिश कैसे होती है?
1: बताता हूँ। देखो, जब ये बूंदें बादलों में मौजूद कुछ कणों पर जमती हैं।
0: क्या क्या? ये कण?
1: हाँ, इन कणों को बूंदों के केंद्रक कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जमती जाती हैं ये छोटी छोटी बूंदें। आमतौर पर ये केंद्रक नमक के अति सूक्ष्म कण होते हैं।
3: नमक के कण? अब ये नमक के कण बादलों में कहाँ से आए?
1: क्यों, उसी समुद्र से जहाँ से ये जलवाष्प आई है। और 1 लीटर मानसूनी हवा में करीब 10 लाख ऐसे बहुत छोटे छोटे नमक के कण होते हैं।
3: इतने सारे?
1: हाँ, इन्हीं कणों पर जमती जाती हैं ये बहुत छोटी छोटी बूंदें, जिससे बूंद का आकार बढ़ता जाता है। और जब इनका आकार 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से से 1/2 मिलीमीटर तक का हो जाता है ना, तो ये बादलों में नहीं रुक पाती।
3: और बारिश हो जाती है।
1: बिल्कुल ठीक। पर भाई कुछ वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि बादलों में पहले बर्फ के छोटे छोटे रवे बनते हैं जो और रवों के मिलने से बढ़ते जाते हैं, फिर बादलों से यही बर्फ के बड़े रवे ही बरसते हैं जो धरती तक आते आते पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश हो जाती है।
4: बारिश? भाई पवन ये कहाँ बारिश करवा रहे हो?
1: अरे आओ आओ गगन आओ। भाई मुझे अभी अभी सचमुच ये लगा कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए।
4: हाँ? क्यों भाई क्यों?
1: बताता हूँ। भाई पहले तुम्हारा परिचय तो कराऊं। सृष्टि, ये है हमारे विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक गगन शर्मा।
5: नमस्ते
4: बेटे।
1: और गगन ये है मेरे बहुत ही अच्छे मित्र सूर्य प्रकाश के बच्चे। ये है सृष्टि, ये विवेक और ये मानव।
4: वेरी गुड। पर पवन ये बताओ कि यहाँ इस बंद कमरे में आप बारिश किस उपलक्ष्य में करवा रहे थे?
1: भाई गगन, ये सृष्टि और मानव आज यहाँ मेरे बुलाने पर ही मानसून के बारे में जानने आए हैं।
4: ओ, तभी आपको लगा कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए।
1: जी, क्योंकि आप इस विषय के विशेषज्ञ जो हैं।
4: भाई पर मुझे पता तो लगे कि आखिर यहाँ बातें क्या हो रही हैं। अच्छा सृष्टि, क्या बता रहे थे पवन आप लोगों को?
0: यही कि कैसे जमीन के गर्म होने से उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और फिर उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से नम व जलवाष्प वाली हवाएं चल पड़ती हैं।
3: और फिर कैसे ये समुद्री हवाएं ऊपर उठती जाती है और ठंडी होती जाती है जिससे बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है।
2: पर मानव सर्दियों में बिल्कुल इसके उल्टा होता है, जैसे गर्मियों में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है उसी तरह जाड़ों में ये जल्दी और ज्यादा ठंडी हो जाती है। पर समुद्र की सतह इतनी जल्दी और इतनी ठंडी नहीं होती और जमीन के मुकाबले गर्म रहती है। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक। अब ये समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने को जमीन के ऊपर की ठंडी हवा जमीन से समुद्र की ओर तेजी से बहने लगती है। इसे सर्दियों का या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं।
4: चूंकि इस मानसून में जमीन पर समुद्र की नम हवाएं नहीं बहती, इसलिए इस मानसून से तमिलनाडु को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में पानी नहीं बरसता।
3: हाँ। बिना बारिश का मानसून?
1: जी, तभी तो मैं कह रहा था कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता।
4: हाँ, यूं तो समझने की सुविधा के लिए मानसूनों को कई क्षेत्रीय नाम दिए गए हैं।
0: क्षेत्रीय नाम?
1: हाँ सृष्टि, जैसे नॉर्थ अमेरिकन, सब सहारा, अफ्रीकन, एशियन मानसून आदि। पर इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल और महत्वपूर्ण मानसून एशियन मानसून ही माना जाता है।
4: हाँ, माना जाता है कि ये करीब 5 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से सक्रिय है। हमारे देश पर जिस मानसून का सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे मैंने अभी भी बताया।
3: वही बिना बारिश वाला मानसून।
4: हाँ, वही। और दूसरा पश्चिमी दक्षिणी मानसून।
3: पश्चिमी दक्षिणी मानसून?
4: हाँ मानव, जिसे ज्यादातर लोग मानसून की तरह जानते हैं वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसे समर मानसून या गर्मी का मानसून भी कहते हैं,
1: क्योंकि ये जून से सितंबर तक यानी कि हमारे देश की गर्मियों में सक्रिय रहता है ना गगन?
4: हाँ सृष्टि, तुम ये तो जानती ही होगी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
3: ये तो मैं भी जानता हूँ।
4: हाँ मानव, इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है।
3: ये भी पता है मुझे।
1: और ये धुरी सूर्य की कक्षा से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है।
3: अच्छा।
4: हाँ, इसकी वजह से गर्मी की ऋतु में एशिया के दक्षिणी भाग, अरब सागर के इर्द गिर्द के क्षेत्र ऐसे नहीं समझ पाओगे। लो ये नक्शा देखो। हाँ। ये क्षेत्र।
0: अच्छा, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र
3: और ये पाकिस्तान।
1: हाँ, और ये सऊदी अरब तक के क्षेत्र बहुत गर्म हो जाते हैं, खासकर हमारी और पाकिस्तान की सीमाओं पर 70,000 वर्ग मील में फैला थार का रेगिस्तान बहुत जल्दी और तेजी से तपने लगता है, जिससे यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। देखो यहाँ पर।
4: हाँ, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ कम दबाव का ये क्षेत्र गंगा के कछार से बंगाल की खाड़ी तक फैलता जाता है। और ये इस नक्शे पर देखो मानो।
3: हाँ, ये देखो। ये गंगा नदी और ये बंगाल की खाड़ी।
4: हाँ।
3: ये तो लगभग पूरा देश ही आ गया इसके प्रभाव में।
4: हाँ। और इस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए मेडागास्कर द्वीप के निकट से हिंद महासागर की तरफ से ठंडी और नम और जल वाष्प से लदी हवाएं बहने लगती हैं, जो भारत के दक्षिणी सिरे पर आकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं।
3: 2 हिस्सों में?
1: हाँ सृष्टि, अब हाँ इस नक्शे की तरफ देखो। एक तो केरल के तटीय भाग से देश में घुसती हैं और हिमालय पर्वत की तरफ बहती हैं। इसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर शाखा कहते हैं, समझे?
2: जब नमी से लदी हवाएं हिमालय की तरफ पहुंचती हैं, तो हिमालय पहाड़ इनके लिए एक बहुत ऊंची दीवार का काम करता है। इससे ये हवाएं काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और काफी ऊंचाई पर पहुंचने के कारण इनमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी हो जाती है और प्रभावित भाग में तेज बारिश होती है। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
1: अरे वाह वाह वाह विवेक भाई, मान गया तुम्हें। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली?
2: कहीं पढ़ी थी अंकल।
1: अच्छा अच्छा, जो तुम्हें अब तक याद है भाई, वाह।
3: तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है।
1: बिल्कुल ठीक समझे तुम मानव।
0: और इस मानसून की दूसरी शाखा?
4: ये बंगाल की खाड़ी शाखा।
3: बंगाल की खाड़ी शाखा, वो क्यों
4: बेटे? क्योंकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर बहती हैं और इस दौरान बंगाल की खाड़ी के समुद्री पानी से इनमें और नमी भर जाती है।
1: फिर ये जैसे ही हिमालय की तरफ बढ़ती हैं, तो उत्तरी पूर्वी भारत, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में तेज बारिश होती है।
4: हाँ, तो बेटे पूर्वी हिमालय के ढलानों पर मेघालय राज्य में एक जगह है चेरापूंजी।
0: वही चेरापूंजी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है?
2: हाँ सृष्टि, वही। एक रिकॉर्ड के अनुसार 14 जून 1876 को चेरापूंजी में एक ही दिन में करीब 104 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। बारिश का ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है।
4: बिल्कुल ठीक कहा विवेक तुमने। और हाँ, वैसे चेरापूंजी में साल भर में औसतन 1087 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
3: तब तो वहाँ रोज बारिश होती होगी, कितना मजा आता होगा ना?
1: नहीं मानव, ऐसा नहीं होता। वहाँ की 2/3 बारिश तो जून, जुलाई और अगस्त में ही होती है। दिसंबर और जनवरी में तो वहाँ इतना कम पानी बरसता है कि नदी नाले सूखे रह जाते हैं।
0: पर अंकल, यहाँ पर इतनी अधिक बारिश क्यों होती है?
1: देखो सृष्टि, चेरापूंजी करीब 1500 मीटर ऊंचाई वाले खासी पर्वत के ढलान पर स्थित घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है।
4: हाँ, दक्षिणी दिशा से आने वाली मॉनसून इस जगह से सीधी सीधी टकराकर इस घाटी में फंस जाती है और वहीं बरस जाती है।
1: चेरापूंजी में ये पानी ज्यादातर सुबह के समय ही बरसता है।
3: सुबह के समय ही क्यों
4: बेटे? इसलिए कि इस घाटी में एक ओर तो उत्तर पूर्व से मानसून आती है, तो दूसरे असम की ओर से दक्षिणी दिशा की मानसून भी आती है। खासी पर्वत के पास ये दोनों मानसून आकर मिलती हैं और रात भर घाटी में घिरी रहती हैं। सुबह होते ही ये पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, जिससे सवेरे के समय भारी बारिश हो जाती है। इसके अलावा एक और प्रकार की मानसून हवाएं यहाँ रहती हैं।
3: वो कौन सी?
4: उसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ये सर्दियों में यानी कि दिसंबर से मार्च की शुरुआत तक सक्रिय रहती हैं।
1: मध्य एशिया और साइबेरिया में सर्दियों में तापमान काफी कम रहता है, जिससे जमीन की सतह के पास की हवा ठंडी होकर नीचे बैठती है। इससे वहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
4: हाँ, इसी समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और इंडोनेशिया में ये नक्शा देख रहे हो तुम?
0: हाँ हाँ, ये रहे दोनों देश।
4: ये भाग सूरज की किरणें सीधे पड़ने से गर्म होने लगते हैं और इससे साइबेरिया से हवाएं इधर की ओर बहने लगती हैं।
1: भारत में ये मॉनसून उत्तर पूर्व दिशा से घुसती है,
0: तभी इसे उत्तर पूर्व मॉनसून कहते हैं।
4: चूंकि ये जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए इसमें जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हमारे यहाँ के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहता है।
3: यानी कि ये ऐसा मॉनसून है जिसमें बारिश नहीं होती?
1: ऐसा भी नहीं है। हमारे देश में तमिलनाडु में ठंड की बारिश इसी मॉनसून से होती है। वैसे इस मॉनसून में श्रीलंका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ठंड की बारिश होती है, पर ये उतनी घनघोर नहीं होती जितनी गर्मी की मॉनसून की होती है।
3: अंकल, मॉनसून से हमें क्या फायदे हैं?
0: लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है, बारिश से किसे फायदा नहीं होता?
1: हाँ, खासकर हमारे देश में जहाँ 80% बारिश तो मॉनसून की वजह से ही होती है। हमारे यहाँ करीब 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं और खेतों की सिंचाई का बड़ा भाग बारिश पर। कुछ जगहों पर तो लोग पीने के पानी के लिए भी बारिश पर निर्भर करते हैं।
4: तो बेटे ऐसे में हमारे देश के लोग तो मॉनसून का बड़ी बेकरारी से इंतजार करते हैं। मॉनसून तो हमारे देश की आबादी की जीवन रेखा है, जीवन रेखा।
1: आमतौर पर गर्मी की ये मॉनसून श्रीलंका, अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के दक्षिण में मई के तीसरे हफ्ते में ही पहुंच जाती है।
4: हाँ, केरल के तट पर ये मॉनसून 11 मई से 18 जून के बीच पहुंचती है।
1: 10 जून तक ये मुंबई तक आ जाती है।
0: पर हमारे यहाँ तो बारिश जुलाई में होती है।
1: हाँ, जुलाई के पहले हफ्ते में ये मॉनसून उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंच जाती है, जुलाई के आखिरी सप्ताह में तो ये कश्मीर तक पहुंच जाती है।
4: तो इस तरह सितंबर अंत तक ये मॉनसून अपने पानी के भंडार को खत्म करके लौटने लगती है। इस तरह गर्मी के मॉनसून की भारत में कारगुजारी करीब 100 दिन तक चलती है। तो बच्चों मुझे लगता है तुम्हें मॉनसून के बारे में काफी जानकारी हो गई।
2: बस आपने सब कुछ बता ही दिया।
4: चलो
2: अब हमें चलना चाहिए अंकल।
4: ठीक है ठीक है, कभी लगे तो आना जरूर।
2: नमस्ते,
5: बाय बेटा, बाय।
6: होगा कहीं इधर उधर, बाहर देखना उसके पैर घर में टिकते ही कहाँ है। अभी तो केरोसिन का डिब्बा मांग रहा था मुझसे वो।
7: केरोसिन का डिब्बा?
6: हाँ।
7: फिर कोई खुराफात सूझी है क्या उसको?
6: तुम्हारी माया तुम ही लोग जानो। जरा देखना बाहर कहाँ है वो, कहीं आग वाग ना लगा दे। हाँ। देख जाकर, जल्दी से जा, जा।
7: मानव, मानव
8: क्या है,
7: कहाँ हो तुम?
8: अरे यहाँ बाहर हूँ।
7: बाहर क्या कर रहे हो? और अभी तो केरोसिन का डिब्बा भी ले गए यहाँ से।
8: हाँ क्यों,
7: क्यों ठहर जरा।
6: केरोसीन? ए मानव, केरोसीन से क्या कर रहा है तू? ये क्या, तू कूलर के पानी को खाली कर रहा है और गड्ढे के पानी में?
8: हाँ मम्मी हाँ, कूलर में अब पानी की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उसका पानी खाली कर दिया है। ज्यादा दिनों तक भरा रहता तो उसमें मक्खी मच्छर पनप कर बीमारियां पैदा कर सकते थे। गड्ढे के पानी में मिट्टी का तेल डाल रहा हूँ ताकि उसमें मच्छर ना पनप सके।
7: मानव तू
8: बेवकूफ है, कह ना, कहे कहे।
7: नहीं नहीं मानव, तू तो समझदार हो गया
8: है।
7: आखिर भाई किसका है? मेरा ही ना।
8: भाई किसका है?
9: धरती मेरी धरती, अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी सुन रहे थे मॉनसून।
10: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-66-66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं। जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: मीरा, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.